फ्रॉम द मूवी बेमिसाल से आप सुन रहे थे किशोर डा की आवाज में एक रोज में तड़प कर। दिल की ये आरज़ू थी कोई दिल रुबा मिले, निकाह है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं

निकाह है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं। दिल की ये आरज़ू थी कोई दिल रुबा मिले, महेंद्र कपूर जी के साथ में सम्मा आगा जी आपको सुनाने वाले थे। तुम्हारा प्यार चाहिए

तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। अभी आप सुन रहे थे ऐसे ना मुझे तुम देखो, किशोर दा आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे ऐसे ना मुझे तुम देखो। हम दोनों मिलके कागज पे दिल दे चिट्ठी लिखेंगे, जवाब आएगा।

मुकेश और आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले थे। हम दोनों मिलके कागज पे दिल दे चिट्ठी लिखेंगे, जवाब आएगा फ्रॉम द मूवी तुम्हारी कसम से हमने पेश किए हैं। अदालत है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं। ओ तुमसे दूर रह के

अभी आप सुन रहे थे हो तुमसे दूर रह के फ्रॉम द मूवी अदालत से हमने पेश किए हैं सुन साइबा सुन।

आपको सुन रहे थे ना रूठो रूठो ना रूठो ना रूठो मेरी जा, फ्रॉम द मूवी जवान मोहब्बत से अभी हमने पेश किए हैं और आपको सुनाने वाले थे आशा भोसले के साथ में मोहम्मद रफ़ी जी। धड़कन है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं मैं तो चला जिधर चले रास्ता।

मैं तो चला जिधर चले रास्ता, भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी परवाना से हमने पेश किए हैं। जिस दिन से मैंने तुमको देखा है उस दिन में एक सपना सा जगा है, मोहम्मद रफी जी के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले हैं। फ्रॉम द मूवी परवाना से हम पेश करते हैं

अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी परवाना, से हमने पेश किए हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले जी की आवाज़ में, जिस दिन से मैंने तुमको देखा है उस दिन से एक सपना सा जगा है। लहरा के आया है झोंका बहार का, मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले हैं। फ्रॉम द मूवी वारिस से आप सुनेंगे।

फ्रॉम द मूवी वारिस से हमने पेश किए है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में लहरा के आया है झोंका बहार का। ओ दिलबर जानिए तेरे हैं हम तेरे, फ्रॉम द मूवी हसीना मान जाएगी।

ओ दिलबर जानिए तेरे हैं हम तेरे। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी हसीना मान जाएगी से हमने पेश किए हैं। प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं और अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो है आशा भोसले और किशोर डा की आवाज़ में आप सुनेंगे दूरियां नज़दीकियां बन गई अजब इश्तफाक है।

दूरियां नजदीकियां बन गई जब इस्तीफा है आशा भोसले के साथ में किशोरदा आपको सुनाने वाले थे। जवान तुम हो जवान हम है ये प्यार तुमसे हो गया है मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले ज़रा मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ और वो ये है, ज़माने वाले हमें इतना गरीब समझते हैं, ज़माने वाले हमें इतना गरीब क्यों समझते हैं, उनको मालूम नहीं कि हम दर्द की दौलत से मालामाल हैं।

अभी आप सुन रहे थे जवान तुम हो जवान हम है, ये प्यार तुमसे हो गया है। मोहम्मद रफी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं, फ्रॉम द मूवी जीवन रेखा से हम पेश करते हैं यार मेरे मेरी बाहों में आ जा। और ये गीत हम पेश करके हैं खास करके दो व्यक्ति के वास्ते, यानी विद्या जी और संता जी के वास्ते, जबकि ये दोनों प्रोग्राम मिलकर सुन रहे हैं। तो चलिए ये गीत हो जाए उन दोनों के नाम।

मोहम्मद रफी जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी जीवन रेखा से हमने पेश किए है यार मेरे मेरी बाहों में आ जा और ये गीत हमने पेश किए है विद्या जी और शांता जी के वास्ते जबकि ये दोनों प्रोग्राम सुनते हैं। दिल बेकरार सा है

मोहम्मद रफी जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे दिल बेकरार सा है। मोहम्मद रफी प्रोग्राम में फिर से आ रहे हैं। सुनने वालों, जियाओ जियाओ जिया, कुछ बोल दो।

अभी आप सुन रहे थे जियाओ जियाओ जिया कुछ बोल दो, गुमराह है फिल्म का नाम। और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं महेंद्र कपूर और आशा भोसले जी की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे इन हवाओं में इन फिजाओं में तुझको मेरा प्यार पुकारे, फ्रॉम द मूवी गुमराह से हमने पेश किए हैं। साथिया नहीं जाना के जी ना लगे, मौसम है सुहाना के जी ना लगे, फ्रॉम द मूवी आया सावन झूम के, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं।

मोहम्मद रफ़ी और लता जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी आया सावन झूम के इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं साथिया नहीं जाना के जी ना लगे कुछ कहता है ये सावन क्या कहता है। लता जी के साथ में मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी मेरा गांव मेरा देश।

कुछ कहता है ये सावन, भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी मेरा गांव मेरा देश, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं। चाहे रहो दूर चाहे रहो पास, सुन लो मगर एक बात। आपको सुनाने वाले हैं किशोर डा के साथ में लता जी, और फिल्म का नाम है दो चोर।

अभी आप सुन रहे थे चाहे रहो दूर चाहे रहो पास, सुन लो मगर एक बात। प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं सुनने वालों, और अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं फ्रॉम द मूवी ब्लैकमेल से हम पेश करते हैं पर्पल दिल के पास तुम रहती हो। किशोर दा आपको सुनाने वाले हैं।

सुन रहे थे पल पल दिल के पास तुम रहते हो। आज मदहोश हुआ जाए रे फ्रॉम द मूवी शर्मिली से हम पेश करते हैं किशोरदा और लता जी आपको सुनाने वाले हैं और म्यूजिक दिए हैं एस दे बर्मन जी

सुन रहे थे आज मदहोश हुआ जाए रे मेरा मन मेरा मन मेरा मन। द माइटी मुकेश जी की आवाज में आप सुनेंगे, साथ में सुमन कल्याणपुर आपको सुनाने वाले हैं। तो सबसे हंसी है दिलरुबा फ्रॉम द मूवी रामू तो दीवाना है।

सुमन कल्याणपुर और नमाइटी मुकेश जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे तो सबसे हंसी है दिवरुआ। रिश्तों से बड़ी चाहत क्या होगी, रिश्तों से बड़ी चाहत क्या होगी, दोस्ती से बड़ी इबादत क्या होगी, जिसे दोस्त मिल जाए तुम जैसा उसे ज़िंदगी से फिर शिकायत क्या होगी। ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी सारा सारा है। लता जी के साथ में मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी धरती से हम पेश करते हैं।

चंद मूवी धरती से हमने पेश किए हैं। ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी जारा जारा है, भी आप सुन रहे थे जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं। फ्रॉम द मूवी गीत से हम पेश करते हैं लता जी के साथ में, महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले हैं। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी, और वो ये है, खामोश चेहरे पर हजारों पहरे होते हैं, खामोश चेहरे पर हजारों पहरे होते हैं, हंसती आँखों में भी जख्म गहरे होते हैं।

लता जी के साथ में महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी गीत से हमने पेश किए हैं, जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं। प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं सुनने वालों। दिल से चाहने वाले लाइफ में एक बार मिलती है, दिल से चाहने वाले लाइफ में एक बार मिलते हैं, उन्हें कभी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से खो मत देना। हम हैं प्यार की डगर के दो मुसाफिर, फ्रॉम द मूवी दो मुसाफिर से हम पेश करते हैं मोहम्मद रफी जी के साथ में, लता जी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे हम है प्यार की डगर के दो मुसाफिर। सुनने वालों, एक गीत पेश करने से पहले जरा मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी, और वो ये है, हंसते रहोगे तो दुनिया साथ है, हंसते रहोगे तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आँखों में भी जगह नहीं मिलती। हम ना कभी होंगे जुदा, मौत हमें आए तो क्या, फिर जन्म लेंगे हम। किशोर डा के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले हैं। चलिए ये सुंदर सा गीत मिलकर सुनते हैं।

आप सुन रहे थे कैसे कोई जाने भला फ्रॉम द मूवी तकदीर से टाइटल अभी आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे। हेमंत कुमार जी प्रोग्राम में आ रहे हैं, फ्रॉम द मूवी प्यासा से हम पेश करते हैं, जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार से प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला।

0: जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार से प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी प्यासा से हमने पेश किए हैं हेमंत कुमार जी की आवाज में। अचम के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसी गगन के तले।
1: डिजिटल ऑडियो प्लेयर इस तोहफे में है 5

अभी आप सुन रहे थे आ जाऊं कि तुझे मैं लेके चलूं, किशोरदा आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी दूर गगन की छाव में। किसका रास्ता देखे ए दिल ए सौदाई, किशोरदा आपको सुनाने वाले हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे किसका रास्ता देखे, ए दिल ए सौदाई, फ्रॉम द मूवी जोशीला से हमने पेश किए हैं, किशोरदा आपको सुनाने वाले थे। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अमर प्रेम है फिल्म का नाम। चलिए मिलकर सुनते हैं।
1: ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाए।

सुन रहे थे ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। किशोरदा की आवाज में अभी आप सुन रहे थे। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं,

अभी आप सुन रहे थे किशोर डा की आवाज में घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं। तेरी नीली नीली आंखों के दिल पे तीर चल गए। लता जी के साथ में मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी जाने अनजाने।

तीर चल गए। अभी आप सुन रहे थे तुमसे अच्छा कौन है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं नहीं। लता जी के साथ में मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं।

आप सुन रहे थे रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं नहीं, खुशबू तेरे बदन की किसी में नहीं नहीं, फ्रॉम द मूवी तुमसे अच्छा कौन है। इसी फिल्म से हमने पेश की है लता और मोहम्मद रफी जी मिलकर आपको सुनाने वाले थे। मोहम्मद रफी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों, जब मोहब्बत जवान होती है।

आप सुन रहे थे जब मोहब्बत जवान होती है, हर अदा एक जुबान होती है। अगर तेरी जलवा नुमाई ना होती, मोहम्मद रफी जी के साथ में सुमन कल्याणपुर जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी बेटी बेटे से।

प्रिय भाई बहनों, जब हम हिम्मत करते हैं तो ताकत बढ़ती है। जब हम जुड़े होते हैं तो एकता बढ़ती है। और जब हम स्नेह करते हैं तो प्यार बढ़ता है। और जब हम देते हैं तो रिश्ते

भाई बहनों, आपका अच्छा व्यवहार आपके रिश्ते को निर्धारित करता है। यदि दुनिया में कोई वास्तविक चुंबक है जो लोगों को अपनी ओर खींचता है, तो वह आपका प्यार और आपका व्यवहार है। और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये आपकी संपत्ति है या धन है। नहीं दोस्तों, नहीं, ये आपकी संपत्ति या कुछ और नहीं है, ये सिर्फ आपका प्यार और आपका व्यवहार है। आपका व्यवहार है, ये आप अपनी जीवन में लागू कीजिए। मित्रों, लागू कीजिए।

दोस्तों, गलतियां, असफलताएं, अपमान, निराशा और अस्वीकृतियां प्रगति वृद्धि का हिस्सा है। इन पांच चीजों का सामना किए बिना किसी ने कभी भी कुछ भी मूल्यवान हासिल नहीं किया है। मित्रों, मुझे क्षमा करना, तो क्या आप कोई विशेष इंसान हो जो ये पांच चीजों का सामना किए बिना सब कुछ हासिल कर लेंगे? नहीं, नहीं, आपको भी इस चक्की में जाना पड़ेगा। और जब आप इससे बाहर निकलते हैं, तब आप एक वास्तविक अनुभवी व्यक्ति होते हैं। मित्रों, ये याद रखना, ये हमेशा याद रखना।

भाई बहनों, खूबसूरत दिन तब आता है जब आप जागते हैं और पाते हैं कि जीवन अभी भी आपकी दुनिया का रंग है, क्योंकि उन लोगों की वजह से जो वास्तव में आपकी परवाह करते हैं और आपको कभी नहीं भूलते हैं, और इसका अनुभव केवल तभी कर सकते हैं जब आप वास्तव में दूसरों के प्रति मधुर और दयालु हो। यह आप पर अच्छा लगेगा, ये आप पर अच्छा लगेगा। इसलिए बिना किसी घमंड के हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें मित्रों, बिना घमंड के।

मेरे सभी प्यारे प्यारे श्रद्धालु भक्तजनों को और अमृतवाणी प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राम राम, सत श्री अकाल, आदाब और नमस्कार। मैं आपका सेवक गोपाल परदेसी बाबा आपको अमृतवाणी श्रवण कराने जा रहा हूँ। पिछले बार मैंने आपको बतलाया था परमात्मा क्या करता है। मैंने पहला भाग में आपसे कुछ बता चुका हूँ, आज दूसरा भाग में हम आपको बताने जा रहा हूँ और एक सवाल भी करूँगा कि ये परमात्मा क्या परमात्मा ही मृत्यु के लिए निमित्त यानी कारण बनता है। जब कोई मरता है तो वास्तव में ये नहीं कहा जा सकता है कि परमात्मा ने उसे छीन लिया या परमात्मा ने उसका संहार किया। नहीं नहीं भाई बहनों, ऐसा कहना तो जैसे परमात्मा पर दोष लगाना है। मान लीजिए रोग हो जाने के कारण कोई मर गया तो क्या परमात्मा ने उसे मार दिया? नहीं, उस व्यक्ति ने बद परहेजी की अथवा उसका पाचन शक्ति कमजोर था, रोग के कारण उसका शरीर ऐसा दुखदायक हो गया कि आत्मा ने उसे छोड़ दिया अथवा उस शरीर द्वारा आत्मा का भोग्य और काल दोनों समीप्त हो गए और रोग के कारण उसका अंत हो गया। इसमें परमात्मा का क्या दोष है? किसी ने दूसरों को कत्ल कर दिया तो क्या ऐसा कहेंगे कि परमात्मा ने उसे मारा या उसका संहार किया? नहीं, तो स्पष्ट है कि परमात्मा के जो कर्तव्य स्थापना विनाश और पालना नाम से आज प्रसिद्ध चले आते हैं वो कुछ और प्रकार के हैं और ऊंच तथा गायन के योग्य तथा सभी को सुख देने वाले हैं। परमात्मा को तो कल्याणकारी कहा गया है तो अवश्य ही उसके कर्तव्यों द्वारा भी विश्व का कल्याण होता होगा। प्यारे भाई बहनों, अगर ये बात ठीक है तो कुछ कर्तव्यों का परिचय, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, परमात्मा के दिव्य नाम रूप धाम और गुणों का परिचय तो हमने आपसे कभी बता चुके हैं। अब आप थोड़ा इस सृष्टि चक्र को समझिए क्योंकि परमात्मा के कर्तव्य इस सृष्टि ही से संबंधित है। लोग स्वस्तिक की रेखा को शुभ मानते हैं और हर कार्य में प्रारंभ में इसे बनाते तो हैं परंतु इसके अर्थ और महत्व को नहीं जानते। इस चक्र में सबसे पहले सतयुग दिखाया गया है। यहां स्वस्तिक की भुजा दाएं ओर है क्योंकि दाएं ओर भुजा अच्छाई अथवा शुभ की सूचक मानी जाती है। प्यारे भाई बहनों, इस आदि काल में सनातन धर्म के लोग देवी गुण कर्म स्वभाव वाले थे और तब उन्हें संपूर्ण सुख शांति प्राप्त थी। आज भी देखिए, यदि कोई मनुष्य अच्छे स्वभाव वाला होता है तो लोग कहते हैं कि ये तो जैसे कोई देवता है अथवा सतयुगी व्यक्ति है। आज कोई मनुष्य चरित्रहीन होता है, दूसरों को दुख देता है या अकाल मृत्यु तथा अनधन की कमी होती है तो लोग कहते हैं कि भाई कलयुग जो है ना, कलयुग में तो ऐसा ही होता है। आज कोई सतयुग थोड़ी ही है कि लोग ईमानदार हो और सतोगुणी हो
या पदार्थ सतो प्रधान हो, ऐसा लोग कहते रहते हैं। तो इस प्रकार के कथनों से स्पष्ट है कि सतयुग का समय बहुत अच्छा था और लोग तब देवी देवता थे। प्यारे भाई बहनों, फिर त्रेता युग आया। त्रेता युग में लोग पवित्रता, सुख, शांति संपन्न थे। हाँ, अब तो दैवी गुणों की दो कलाएं कम हो गई थी, इसलिए स्वस्तिक की भुजा नीचे की ओर है, क्योंकि अब मनुष्य सतो प्रधान से उतर करके सतो सामान्य अवस्था को आ गई थे। प्यारे भाई बहनों, फिर द्वापर युग आया। अब सतयुग और त्रेता युग के सूर्य वंश तथा चंद्र वंश की आत्माएं अनेक जन्म सुख भोगने के बाद बाएं मार्ग में चली गई, अर्थात विकारों में जीने लगे। इसलिए स्वस्तिक की भुजा बाएं ओर अथवा उल्टे हाथ है, क्योंकि बायां हाथ अपवित्रता अथवा अशुभ का संकेतक है। अब सृष्टि में आदि सनातन देवी देवता धर्म में गिरावट आने के परिणाम स्वरूप अन्य धर्म भी स्थापित होने लगे हैं। अब मनुष्य अपने गुण कर्म स्वभाव से रजो प्रधान थे, अनेक धर्म होने के कारण अब कलह क्लेश और लड़ाई झगड़ा भी शुरू हुआ और काम क्रोध आदि विकारों के कारण दुख तथा अशांति ने भी सृष्टि में प्रवेश किया। प्यारे भाई बहनों, उल्टे कर्म अर्थात विकार युक्त कर्म करते करते सृष्टि अपवित्र और दुख की ओर बढ़ी और तब कलयुग आया। कलयुग में लड़ाई झगड़ा अशांति जो कि द्वापर युग से शुरू हुए थे बढ़ते ही गए। इसलिए इस युग में स्वस्तिक की भुजा ऊपर की ओर दिखाई गई है। तब तमोगुण की प्रधानता हुई, लोग असुरी स्वभाव के हो गए और धर्म की अत्यंत ग्लानि हो गई। प्यारे भाई बहनों, परमात्मा के कर्तव्य की आवश्यकता कब होती है? इस प्रकार जब कलयुग का अंत आता है तब सतयुग के पुनः स्थापना के लिए मनुष्य को फिर से देवता बनाने के लिए अधर्म का विनाश और सत धर्म की पुनः स्थापना के लिए और संसार को दुखी से सुखी करने के लिए परमात्मा को अपना कर्तव्य करना पड़ता है, क्योंकि तब वही एक आत्मा रह जाती है जो कि धर्म से गिरा हुआ नहीं होती और स्वरूप विस्मृति तथा दुख को प्राप्त नहीं होती। अगर परमात्मा इस समय कर्तव्य न करे तो कलयुग का अंत करके सतयुग कौन लाएगा? मनुष्य को देवता कौन बनाएगा? धर्म के बेल कौन लगाएगा और विश्व में फिर से सुख और शांति की स्थापना कैसे होगी? प्यारे भाई बहनों, कैसे होगी? क्या कोई कलयुगी मनुष्य, चाहे वो विद्वान या कर्म सन्यासी ही क्यों न हो, दूसरों को सतयुगी अथवा देवता बना सकता है? नहीं बना सकता है। विकारी मनुष्य को देवता बनाने वाला तो देवों से भी महान अर्थात परमात्मा ही है, जिसे पति तपावन अथवा देवों का भी देव कहा गया है। प्यारे भाई बहनों, मनुष्य को धर्म से गिरा हुआ से पवित्र यानी पावन, दुखी से सुखी या नर से श्री नारायण बनाने के लिए
परम पिता परमात्मा मनुष्य आत्माओं की बुद्धि को ही दिव्य बनाते हैं, क्योंकि बुद्धि के भ्रष्ट होने से ही मनुष्य मन वचन और देह यानी काया से बुरे कर्म करता है और बुरे कर्मों से ही मनुष्य को दुख और अशांति होती है। अब बुद्धि को दिव्य बनाया जा सकता है ईश्वरीय ज्ञान से और बुद्धि का योग विकारों से हटाकर एक परमात्मा में लगाने से। प्यारे भाई बहनों, चलो हम फिर आपको एक भजन सुनाते हैं, उसके बाद हम इस प्रोग्राम को आगे ले चलेंगे।

कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए अभी आप भजन में सुन रहे थे। तो प्यारे भाई बहनों, बात को हम आगे ले चलते हैं। तो अभी हम आपसे बता रहे थे ना कि बुद्धि को दिव्य बनाया जा सकता है अगर ईश्वरीय ज्ञान से और बुद्धि का योग विकारों से हटाकर एक परमात्मा में लगाने से। तो परम पिता परमात्मा मनुष्य आत्माओं को ईश्वरीय ज्ञान और सहज योग की शिक्षा देने का कर्तव्य करते हैं, क्योंकि उनके बिना सत्य ज्ञान अन्य कोई नहीं दे सकता है प्यारे भाई बहनों। इसलिए उन्हें ही दिव्य बुद्धि के दाता, ज्ञान चक्षु विधाता आदि महिमा सूचक शब्दों द्वारा याद किया जाता है। परंतु परमात्मा तो निराकार अर्थात अशरीरी है, और जैसे मनुष्य आत्माएं कानों द्वारा ज्ञान का श्रवण कर सकती है, वैसे ही परमात्मा को भी मुख इंद्रिय की आवश्यकता होती है ताकि वो ज्ञान दे सके। ध्यान करना प्यारे भाई बहनों, परंतु परमात्मा तो जन्म मरण से न्यारे हैं, कर्मतीत है, और उनके कोई माता पिता भी नहीं होते। वो कोई कर्म धन्य शरीर तो ले नहीं सकते, वो किसी माता के गर्भ से तो जन्म नहीं ले सकते, वो तो सभी के माता पिता है, सभी के माता पिता है। प्यारे भाई बहनों, प्रभु तो अवतरित होते हैं, अवतार लेते हैं, इसीलिए परमात्मा स्वयं परम धाम से अवतरित होकर एक साधारण मनुष्य के तन में प्रवेश करते हैं। क्योंकि मैंने आपको समझाया भी है कि ज्ञान देने के लिए मुख इंद्रियां की आवश्यकता होती है। परमपिता परमात्मा के इस प्रकार के जन्म को ही दिव्य जन्म अथवा परकाया प्रवेश कहते हैं। मगर हम विश्वास ही नहीं करते हैं, हम इन बातों पर कभी ध्यान ही नहीं देते हैं, क्योंकि मुद्दत से हमें कुछ और बताया गया है। हर एक इंसान को समय समय से बराबर परमात्मा के बारे में गहराई से चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए, अपने हृदय में उन्हें प्रवेश करो, अपने में अवतरित करो प्रभु को, तभी आपको ठीक ठीक ज्ञान मिल सकता है। सुनी सुनाए ज्ञान आप कुछ दिन बाद भूल जाएंगे, तो फिर वही कलह कलेश दुख दरिद्र पाप आदि आदि छाने लगेगा। प्यारे भाई बहनों, प्रतिदिन कुछ समय के लिए परम धाम से आकर एक साधारण मनुष्य के मुख द्वारा ज्ञान एवं सहज योग की शिक्षा दे जाते हैं प्रभु, तथा विकारों पर विजय प्राप्त करने और जीवन में दिव्य गुण धारण करने की उपाय बता जाते हैं। अब वर्तमान समय परमपिता परमात्मा साधारण मनुष्य के मुख द्वारा वो कर्तव्य कर और करा रहे हैं प्यारे भाई बहनों। इसलिए अच्छे अच्छे बातों और ज्ञान को जीवन में उतारने की प्रयत्न करना चाहिए। मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों और प्यारे प्यारे बच्चों, इन बातों पर आप जरूर ध्यान करते हुए अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना, और ठीक तरह से चिंतन करो कि क्यों हम दुखी हैं, क्यों मेरे पास सुख शांति आराम नहीं आ सकते हैं, जबकि हम प्रभु के अंश हैं, हम प्रकृति के अंश हैं, और प्रभु सुख के सागर हैं, दया के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, तो हमारे में क्यों जलन
कलह, क्लेश, दुर्गुणों ये सब भरा हुआ है और हम प्रतिदिन भक्ति भी करते हैं, फिर भी हम दुखी हैं। मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों और प्यारे प्यारे बच्चों, इन सब बातों पर आप ध्यान करते हुए अंतर्मुखी होना है, अंदर जाना है आपको, अंदर प्रवेश करो, अपने हृदय में झांको, तो अपने आप सवालों के जवाब आपको मिलता चला जाएगा और आप आहिस्ता आहिस्ता सुख शांति का अनुभव करने लगेंगे और एक दिन आप कमल फूल की तरह खिलने लगेंगे और फिर उसके बाद मंगल ही मंगल, मंगल ही मंगल, सुख ही सुख, सुख ही सुख। और अब समय भी हो गया है इस प्रोग्राम को समाप्त करने के लिए। तो हमारे प्यारे सुनने वालों, यहाँ तक था आज का अमृतवाणी का प्रोग्राम। मुझे आशा उम्मीद है कि आप प्रोग्राम को सुने हैं और प्रसन्न भी किए होंगे। मैं आपका सेवक गोपाल आपसे यही कहना चाहता हूँ कि दुख को अपने गले लगा लो तो तकदीर तेरे कदमों में होंगे। और दुनिया में वैसे फरिश्ता कोई नहीं है, इंसान ही बन के रहना जिंदगी का दूसरा नाम समझौता है। और बुरा किसी का मत करो, बुरा बुरे का फल आगे तेरे आएगा, आज नहीं तो कल। और बिन सोचे बिन समझे क्यों निकले मुख से कोई बोल, बोल बड़ा अनमोल है प्राणी पहले उसको टोल। दिया हुआ कभी वचन ना जाए, बेशक जाए प्राण। आज के दिनों में ऐसा व्यक्ति है बहुत ढूंढना पड़ेगा। एक बार निकले बोल वापस नहीं आ सकती, इसलिए सोच कर बोलो। तलवार की चोट उतनी तेज नहीं होती जितनी जिभिया की। और जिसने माँ की कोख देखी है वो कब्र जरूर देखेगा, सिर्फ आगे पीछे का फर्क है। और मृत्यु हर जीवन का अंतिम सत्य है। और मैं बार बार यही कहता हूँ कि प्रभु आप मुझे मिलो या ना मिलो ये तो आपकी इच्छा है भगवान, मगर मुझे उनसे मिलवा दो जो आपसे मिल चुके हैं। तो मुझे इजाजत दीजिए, सबको मेरा प्यार भरा राम राम, सत श्री अकाल, आदाब और नमस्कार। मिलेंगे फिर कभी अगर रहा जिंदगी।

0: आशा भोसले जी के साथ दे रहे गीता दत्त एक बहुत ही सुंदर गीत आपके लिए नेहंतिन सेस तक के ये पिक्चराइज किया गया फिल्म से कि इस दुनिया में सबसे अच्छी चीज क्या है, तो जरा हम यहाँ मिलकर सुने गीत के।
1: दुनिया में सबसे अच्छी चीज क्या जी? पैसा।

पेंदे की लुटिया फेंको, गली सड़ी ये छुटिया फेंको, गड़वी भी थाली भी फेंको, हाँ हाँ ये थाली भी फेंको, ये भी फेंको, वो भी फेंको।

0: हुआ करती हूँ कि आप जो दुल्हन बनना चाहते हो तो जरूर से आप ही दुल्हन बन जाओ। आशा भोसले जी और शमशाद बेगम जी की आवाज में अपना कौन पराया फिल्म का नाम। ए मेरे दोस्तों, आपको फौन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से बहुत सारा प्यार मिले।
1: यहाँ कोई फाइव स्टार होटल है क्या?
2: वो किस लिए जी?
1: अरे चाय पीना था भाई, ये चाय पीना तो हमारा होटल का पियो जी। इससे अच्छा चाय पूरा हिंदुस्तान में किधर बने मिलता जी? ये चाय का दुकान है।
2: हाँ जी
1: बनाइए।
3: भाई साहब मैं जरा पेशाब करने जा रहा हूँ, आप देखेंगे क्या?
1: अरे कमाल करते हैं यार, आप पेशाब करेंगे हम देखेंगे, आप नाच क्या कर मुझते हैं, कमाल का शहर है यार।
3: भाई साहब मैं सुटकेस की बात कर रहा हूँ।
1: अच्छा अच्छा, तो ऐसे बोलिए ना, नए आए के शहर में?
3: बिहार से हैं।
1: अच्छा एक बात बताइए, एक अजनबी शहर में आप हमको सूटकेस देकर जा रहे हैं, हम लेकर भाग गए तो?
3: शक्ल से तो आप बड़े रईस नजर आते हैं।
1: थैंक यू।
3: आप चोरी कर सकते हैं।
1: अब हाथ मिलाकर सर पर मत बैठो यार, फौरन जाओ तुरंत।
3: थैंक यू भाई साहब।
1: सुनिए, गाना मत गाने लग जाना भाई। कौन चाय मांगी थी पार्लियामेंट से आएगी क्या? अबे चाय मांगा था, पानी नहीं मांगा था बे। अजीब शहर है यार, आते आते दिमाग का चक्कर।
3: थैंक यू भाई साहब।
1: आपको क्या लगता है हम आपका थैंक यू सुनने के लिए यहां खड़े हैं? सुनिए, अब हम जा रहे हैं करने, और आप देखिए सूटकेस
3: जी
1: आते हैं।

आपने यहाँ से सुने एक छोटा सा डायलॉग फिल्म कुंवारा, कुंवारा बिरयानी। हाँ नाना, कुंवारा नहीं है बल्कि कौवा बिरयानी ये फिल्म का नाम है। और इस बार है दुनिया मेरी बाप की है।

0: किया गया है। आप तो सुनते हैं ये सब गीत तो बहुत अलहदा अलहदा है, आपके लिए लाया गया है, है ना। तो यहाँ से हम एक छोटा सा डायलॉग फिर से सुन ले।
1: कल रात मेरे को एक सपना आया।
2: कैसा सपना?
1: सपने में मैंने देखा कि हम तीनों बैठ कर दारू पी रहे थे और ये गूंगा
0: राजपाल यादव और शक्ति कपूर जी के आवाज में यहाँ से हमने सुने एक छोटा सा डायलॉग।

बड़ा रुपया और आप जरूर से सुन ली होगी, नहीं सुने तो होंगे पर शायद आपको पता नहीं होगा कि इस गीत को किसने गाए हैं। तो हम यहाँ से आपको जरूर से बता

कि ये गीत महमूद साहब खुद ही गाई है अपनी ही आवाज में। फिल्म का नाम ही था है सबसे बड़ा रुपया।

0: केवल शादीशुदा लोगों के लिए ये सुंदर सा पत्नी जय जय जय जय जय पत्नी महारानी की उपलक्ष पर सुंदर सा गीत आपके लिए चला दिया गया है। कुछ अलहदा अलहदा गीत आपके लिए।
1: बाहर जाना था,
2: जाना था
1: किसी बड़े होटल में, खाना खाना था,
2: खाना खाना था।
1: अब कौन बनाएगा खाना?
2: खाना मेरी जाना, खाना पकाएगा तुम्हारा दीवाना। नो टेंशन, एक्शन, अटेंशन।

0: शादी की सालगिरह थी।
1: थी?
0: तुम्हें घर जल्दी आना था।
1: आना था?
0: हम दोनों को बाहर जाना था।
1: जाना था?
0: किसी बड़े होटल में खाना खाना था।
1: खाना खाना था?
0: अब कौन बनाएगा खाना?
1: खाना मेरी जाना, खाना पकाएगा तुम्हारा दीवाना। नो टेंशन, एक्शन, अटेंशन, राइट टर्न टू

फिल्म का नाम हिरासत, फिल्म हिरासत से ये सुंदर सा गीत आपने और मैं भी यहाँ से मिलकर और सुने हैं। कुछ अलग-अलग गीत जैसे हमने कहती हूँ कि आपके लिए चुन चुन कर और लाया जाता है।

अच्छा है कि पहले अनाज पैदा करें। आपने सड़कों पर देखा होगा कितने दुबले पतले नंगे बच्चे नाक में कुदरती आइसक्रीम बहती थी, मुंह पर 9:15 बजे अपने माँ बाप की बेवकूफी का जीता जाता एडवर्टाइजमेंट बनकर घुमा करते हैं। अगर उनके माँ बाप से ये पूछो कि अगर भाई अपने देश पर ये जुल्म क्यों किया तो लकीर के फकीर एक ही जवाब देंगे क्या? कि इसमें हमारा क्या कसूर, ये तो भगवान की देन है। अरे कुमार बाबू, हम हिंदुस्तानी लोगों का धर्म और ईमान एक ही हो गया है, अगर कुछ पैदा हुआ तो भगवान की मर्जी, तो मर गया तो भगवान की मर्जी, लहर पड़ गया तो भगवान की मर्जी, पाप इंसान का और जमानत भगवान का। धड़ाधड़ बच्चे पैदा करने से तो अच्छा है कि पहले अनाज पैदा करें। आपने सड़कों पर देखा होगा कितने दुबले पतले नंगे बच्चे नाक से कुदरती आइसक्रीम बहती थी, मुंह पर 9:15 बजे

सुते न आया बुढ़ापा, ये 60 बरस की बुढ़िया, ये 60 बरस की बुढ़िया लेकिन फिल्मी गाने गाती

0: हार बना के मुझको सारी रात जगाती है। पत्नी मुझे सताती है, मेरी पत्नी मुझे सताती है।
1: और थारी भी नाच न जानो आंगन टेढ़ा, बस वो बात है थारी। तुम कहीं समझोगे नारी को, तुम दोनों हो नारी। खाली मुँह से बात करो हो, दिल में सारे जोश नहीं। उठो बता दो मर्द हो तुम, बंदरिया खरगोश नहीं। नागन से नारी बुरी जो चलत चलत बस जाए। अरे हमसे सीखो इसका मंत्र कैसे बस में आए।
2: कैसे कैसे?
1: अरे थारी
3: का नाम है पति पत्नी है। ये अलग अलग गीत जो आपके लिए इसी फिल्म से और अन्य फिल्म से लाया जाता है। पति पत्नी मूवी का नाम नेकन 3 सेशन 6 तक में ये पिक्चराइज किया गया है।

से और सलामी ले हम भी दरबार से। पाँव हमारे चूमते कालीन हो, दाएं बाएं पीछे नौकर तीन हो।

0: यस यस
1: आजू बाजू ठंडे फुहारे
0: मरने से पहले मिल जाए यही कहते हैं जन्नत जिसे
2: ओ हो हो कहते हैं जन्नत जिसे
0: ओ दाता ओ दाता।

0: को भी एक प्यारा बंगला, चाहे हम भी तेरे चाहने वालों में हैं। ओ दाता दे हमको भी एक प्यारा बंगला, चाहे हम भी तेरे चाहने वालों में हैं।
1: आशा भोसले जी और मोहम्मद रफी जी की आवाज में ओ दाता दे दे हमको भी एक प्यारा बंगला।

हेमंत कुमार जी की आवाज में जब जब होता है नास धर्म का, तो जी हाँ, प्रभु अपना अवतार अवश्य ही लेता है।

के प्यारे प्यारे सुनने वालों, जान पहचान दोस्तों, भाई बहनों, कहती हूँ कि आज से बेहतर कुछ भी नहीं है, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। रिश्ते को वक्त देना सीखो, रिश्ते को वक्त देना सीखो प्यार।

मैं हूँ सेविका शांता, स्वीकार कीजिए मेरी प्यार भरी राम राम प्रणाम सलाम शास्त्रीय काल राधे राधे यानी कि शाम से मिला दे। नमस्कार हो जी, आप सब कैसे हो?

सभी को हार्दिक से स्वागत है इस खूबसूरत दिवस में। जो कोई आज कोई भी शुभ कार्यों को कर रहे हैं या तैयारियां करती है, आप सभी को बहुत सारे शुभकामनाएं पेश हैं। जो दुखित परिवार है, बीमार है, लाचार है, उन सभी को सहन शक्ति मिले, यही दुआ है, प्रार्थना है प्रभु परमात्मा से।

यस, मैं आ गया हूँ अमित कुमार जी की आवाज़ में। हमने सुने सुने वाला और फिल्म का नाम आप जरूर पूछते होंगे, सोचते होंगे कौन सा फिल्म है। तो मैं सोचती हूँ आपको बता दे, क्योंकि अच्छा लगता है जानने के लिए कभी कभी कि कौन फिल्म से ये गीत निकाला जाता है। फिल्म का नाम है औलाद के दुश्मन। नेखन तक में ये पिक्चराइज किया गया है। जी हाँ, अमित कुमार जो किशोरदा के सुपुत्र है, हार जाना कोई बुरी बात नहीं, हार जाना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु फिर से प्रयास ना करना ये बहुत बुरी बात है। हीरा को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, हीरा को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकता है।

मैं ढूंढ रही थी फिल्म का नाम। हाँ, फिल्म का नाम है कहो ना प्यार है। हाँ, जरूर से कह देना कि प्यार है। इंतजार मत करना।

जी हाँ आ गया आ गया। अपनी गलती पर माफी मांगना आपके सम्मान को कभी कम नहीं करता, बल्कि उससे और बढ़ता।

भूल जाओ बीते हुए कल को, भूल जाओ बीते हुए कल को, दिल में बसा लो आने वाले कल को। मुस्कुराते रहो चाहे जैसे भी हो पल, मुस्कुराते रहो चाहे जैसे भी हो पल, खुशियाँ लेकर आएगा आने वाला कल।

फिल्म का नाम आप मुझे अच्छे लगने लगे, तो इधर संतोई के पिक्चराइज किया हुआ फिल्म है। हवाओं ने ये कहा और क्या कहा, तो यहाँ से हम आप और मिलकर सुने हैं। तुम खफा हो गए तो कोई खुशी ना रहेगी, तुम्हारे बिना चिरागों में रोशनी ना रहेगी। क्या कहे क्या गुजरी इस दिल पर, जिंदा तो रहेंगे पर जिंदगी ना।

को हो जाने दो, प्यार को हो जाने दो। फिल्म का नाम दुश्मन और सुनाई हमको द नाइटिंगेल। लता जी और साथ दे रहे थे कुमार शानू जी। जी हाँ सुनने वालों, आप चुने हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर। आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, आपको बहुत सारा प्यार मिले और एक शुभ और मंगलमय दिवस आप सभी को पेश है।

जय जय राम, जय जय राम। आप सभी को हार्दिक से स्वागत है। वक्रतुंड महाकाया सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आकाशवाणी रेडियो फाउन के सुनने वालों, प्रिय भक्तजनों, प्रिय आत्माओं, आप सभी को हार्दिक से स्वागत है। ये खूबसूरत दिवस में भजनमाला कार्यक्रम आपके लिए प्रस्तुत किया जाता है। आप इसे जरूर से सुने, अपन जीवन में प्रयोग करें और जरूर से इसमें से आप उड़ जाए।

0: आयुष्मान, आओ हनुमान।
1: महात्मन, आप मुझे पहचानते हैं?
0: हम त्रिकालदर्शी हैं, हम सब कुछ जानते हैं।
1: अच्छा
0: हाँ, ये भी जानते हैं

मुझे क्षमा करें भगवान, मेरे स्वामी की आज्ञा है कि मैं रात ही रात में बूटी लेकर पहुंच जाऊं। मैं तो एक राम भक्त की कुटिया देखकर केवल प्यास बुझाने उतरा था।

राम का मंदिर है, यहाँ उसे विराजे रखना। मन राम का मंदिर है, यहाँ पर उसे विराजे रखना। जिसके सीने में श्री राम है, जिनके चरणों में सब धाम है, जिनके लिए सब कुछ दान है, जिनकी

रामायण की कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं। राम भक्त ले चला है राम भक्त भरत जी और ले चला है राम के निशानी उनका पादुका जो वन में जाकर और भरत जी राम को वापस लाने को गए थे पर उनका पादुका लेकर और अयोध्या लौटे थे। राम जी के सहारे राम जी की सवारी निकली है सच धज के राम जी की सवारी निकली है सच धज के राम जी की लीला है बेहद न्यारी न्यारी श्री राम का नाम है सदा सुखदायिनी और हितकारी। आप सभी को एक शुभ दिवस पेश किया जाता है आपका फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से भजन माला कार्यक्रम।

0: हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक।
1: सुनो रे राम कहानी, आपके लिए प्रस्तुत किया जाता है ये सुंदर सा भजन प्रोग्राम फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। भगवान राम विष्णु जी का सातवां अवतार है। उनका जन्म त्रेता युग में

और यही रात है भारी, हम अगर जान जा कि हमारा आखिरी सांस हमें लेना है तो कितना भारी पड़ जाएगा। अयोध्या जिनका धाम है, राम जिनका नाम है, मर्यादा पुरुषोत्तम वो राम है, उनके चरणों में हमारा

सुंदर अति सुंदर अति सुंदर, हमने सुने राम सेतु बंधन की, राम नाम से तैरने लगते हैं भी पत्थर। तो सोचो हम इंसान हैं, हम अगर राम का नाम ले तो हम कैसे ना तैरते रहेंगे। ये कठिन कलिकाल पापों का खजाना है, ये कठिन कालिकाल पापों का खजाना है। ज्यादा तौर पर इसमें ना धर्म है ना ज्ञान है और ना योग तथा जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी की ही भजते हैं वो ही चतुर है। श्री राम जी की कृपा से आपका हर पल शुभ सुंदर सुखदायक एवं खुशियों से

अवध की ओर सजनी। अवध यानी कि अयोध्या। अयोध्या भी एक शहर है भारत में, और हम लोग भी तीर्थ करने जाते हैं अयोध्या में। और अगर हम समझदारी से काम करें तो समझदारी ये है कि हमारा शरीर जो है ना, इसे हम अयोध्या बना ले, और इस अयोध्या जो है, ये शरीर हम अयोध्या बना ले, और यहीं से हम राम नाम का जप करते हुए इसे अंदर लाए, तो हमें अयोध्या जाना तो आवश्यकता तो नहीं होगा। घर बैठे हम अपना शरीर को, अपना तन मन हम अयोध्या बना ले और राम नाम जपे, तो घर बैठे ही हमारा उद्धार अवश्य अवश्य अवश्य हो जाएगा। आलिंदतिमिद एंड द स्वकन लातन आलस अन हेत लॉट ओवर मार द स्टर्क एंड सेल्फ फॉरसेकर दन De sterke en de zelfverzekerde mensen vertrouwen nooit op het lot of de bestemming. Ze gaan gewoon daarvoor. Jeze Hanumanji gaite jivan bhuti lane ke liye to usko raste mein kitne jane roke par wo apne laksh ke daur chale gaye. Als wij allemaal vertrouwen, als we allemaal vertrouwen hebben in ons bestemming, dan kunnen we gewoon doorgaan en doorgaan.

Awasje, sabaka, mangal hoi. Het kost geen geld, mijn lieve mensen. Het kost geen geld. Helemaal niets. Alleen een beetje energie. En dat is, zeg gewoon ram ram. Zeg gewoon ram ram. En het voelt geweldig. Jai Shri Ram, Jai Shri Ram. Kete kina kharcha lagta hai. Anna paisa lagta hai. Ram ram boliye. Bahut accha lagta hai. माला कार्यक्रम यहाँ से संपूर्ण होने को आ गए हैं। तेने सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद किया जाता है। स्वीकार कीजिए इस वक्त के लिए सिविका शांता की प्यार भरी नमस्कार।

आज मैं ऊपर और जमाना है नीचे, इस बार हमको सुना दी है कविता कृष्णमूर्ति जी, साथ दे रहे थे जी हाँ वही मशहूर सांगर कुमार शानू जी।

प्यारे सुनने वालों, सोनू निगम अलका याग्निक अनु मालिक जी, दीवाना है ये मेरा दिल और बाकी में इसलिए दीवानगी की तरह मैं भी उपस्थित हो गई हूँ आपके सेवा करने के लिए। भोजन भोजन भोजन यानि कि खाना पकाना। भोजन बनाते समय भोजन बनाते समय क्या नहीं करना चाहिए, यहाँ से मेरे पास कुछ टिप्स है और सोचती हूँ कि आपके साथ ये हम देल कर ले। तो मेरे प्यारे सुनने वालों, यहाँ से सुनिए कि भोजन बनाते समय ना करे ये काम, और वो कौन सा काम है। तो पहला ये है कि खाना बनाते समय कभी भी खाना नहीं चीखिए, और ध्यान रखे मेरे प्यारे सुनने वालों कि खाना बनाते समय जले नहीं, कि खाना ना जले। खाना जल जाने से राहु ग्रह का प्रकोप होता है। नौ ग्रहों में से राहु ग्रह भी एक है। खाना जलने से राहु का प्रकोप होता है। और ये अवश्य जरूर से इस पर और ज्यादा ध्यान धरे, तो वो ये है कि खाना बनाते समय सदैव अपना मन जो है वो साफ रखे। क्यों साफ रखे? क्योंकि आप जिस समय पे आप भोजन तैयार करते होगे और आपका मन जो भी सोचेगा वो सब त्रेलिंग जो है वो खाना में जाएगा, और जो खाएगा वो खाना वो उनके शरीर में वैसे ही तरंग भी उत्पन्न होगा। तो सदैव हमेशा खाना बनाते समय मन को साफ रखे, या हो सके तो कोई भजन धर दे, मंत्र धर दे, और मंत्र भजन जो ना हो तो मन ही मन में ऐसा कुछ गुनगुनाए ताकि वो तरंग वो खाना में जाए। और रोटी के ऊपर ये लिखा है कि रोटी बनाने से पहले कुछ बूंदे दूध के तावा पर डालने से सुख समृद्धि बनी रहती है।

उदित नारायण अलका याग्निक जी से हम सुनेंगे चुपके से कोई आएगा। बहुत प्यारा गीत है आपके लिए स्पेशल।

हाँ तो बता दो आप क्यों प्यार किया है, ये सुंदर सा गीत आपके लिए पेश किया गया है आपका फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए। इस बार हम मिलकर सुनेंगे उदित नारायण जी की आवाज में और विभा शर्मा जी की आवाज में।

आपने सुन लिया अलका याग्निक जी से और ना उदित नारायण और विभा शर्मा के आवाज में कि इश्क हुआ और भला बताओ कैसे हुआ।

0: उदित नारायण जी सुना दी कि हो नहीं सकता और क्या हो नहीं सकता, ये गीत में वो गाकर और यहाँ हम सभी को सुना दी है। इसमें स्टार कास्ट थे सोनाली बेंद्रे जी और जी हाँ अजय देवगन जी। अच्छे अच्छे गीत आपके लिए चुनकर लाया जाता है आप ही का फान हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से।
1: गलियां बहार वादियां ये मौसम, खेत हरियाली पहाड़ बर्फ, ये कायनात कुछ भी नहीं,
2: कुछ भी नहीं,
1: कुछ भी नहीं। गरन में वो नहीं,
2: वो है कौन?
3: कप्तान साहब, उस लड़की का कोई नाम तो होगा।
1: नाम

कुमार शानू अनु मालिक जी की आवाज़ में यहाँ से हम वही फिल्म से निकाल दिया दिल, जिसका नाम है दिल जले।

फिल्म राज से ये सुंदर सा गीत आपके लिए प्रस्तुत किया गया है मेरे प्यारे प्यारे सुनने वालों। और बात तो ये है, हम आपको यहाँ से फिर स्वागत कहती हूँ, हर बार की तरह ये बार भी स्वागत हो आप सभी को, जहाँ भी हो जैसे भी हो। बहुत सारा प्यार मिले आपको फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। दुख की बात यह है कि वक्त बहुत कम है, खुशी की बात यह है कि अभी भी वक्त है ना। दुख के बाद भी है और खुशी के बाद है कि Het trieste is dat de tijd zo kort is en het fijnste is dat er nog tijd is. Dus benut het maar goed en eens nog eens goed. Mijn lieve mensen, bij deze Batmeri Sunieto Zara.

0: बात तो सही है।
1: बात मेरी सुनिए तो जरा,
2: छोड़िए भी कहने और सुनने को है बाकी क्या रहा।

0: वाकई में लड़कियों इतनी अहंकार मत करो, क्योंकि लड़के जो है तारीफ करते हैं लड़कियों की। फिल्म कुछ ना कहो से निकाल दिया गया है, ये फिल्म पिक्चराइज किया गया है 2003 में। बात मेरी सुनिए तो जरा, सिंगर है शंकर मदन मोहन, ना ना ना ना, शंकर महादेवन, जी हाँ शंकर महादेवन और महालक्ष्मी आयर जी के आवाज में हमने सुने हैं। बात मेरी सुनिए तो जरा, verspil geen tijd aan pogingen om iemands denkwijze te veranderen, want daar bent u gewoon machteloos. Probeer de plek en de mensen te veranderen, dan kunt u vooruitgang boeken.
1: मैं बर्बाद होना चाहता हूं।

तलसोंग से हमने सुने गले लग जा, सिंगर हे जेवत अली एंड बाजी जोशना। जी हाँ, आ गले लग जा, इसमें अपना कला दिखाई है अक्षय कुमार जी। टच मी, खुद को जानने के लिए, मेरे प्यारे सुनने वालों, खुद को जानने के लिए मौन रहना उतना ही जरूरी है जितना दूसरों को जानने के लिए उसको सुनना। आप तो समझदार है, तो आप समझ गए होगे, है ना। Om jezelf te leren kennen is stilte net zo belangrijk als luisteren naar anderen.

टच मी सोनिया। हाँ बोलते हैं छूने के लिए कि छूने के लिए सोनिया छुओ ना। फिल्म धूम तुवे से निकाल दिया गया है। कलाकार इसमें है ऋतिक रोशन, अभिषेक, ऐश्वर्या राय, उदय चोपड़ा, बिपाशा बासु और गीत के गाने वाला है के और अलीशा चिनई। कहते हैं कि अपने बारे में, मैं भी कहती हूँ मेरे प्यारे सुनने वालों कि अपने बारे में कभी बुरा मत सोचना, सपने में भी अपने बारे में कभी बुरा मत सोचना, क्योंकि सुनिए जी, क्योंकि उसके लिए ऊपर वाले ने पड़ोसियों को और पर रिश्तेदारों को रखा है। आप समझ गए ना। तो सपने में भी अपने बारे में बुरा मत सोचना। Denk nooit slecht over jezelf. Denk nooit slecht over jezelf, want God heeft daarvoor buren en familieleden geschapen. Er zijn ook wel lieve buren en lieve familieleden uitgezonderd.

चलो ये गीत भी यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं इस वक्त के लिए और आपके लिए एकदम बेमिसाल गीत यहाँ से तैयार करके रखी हूँ, क्योंकि आप वही ग्रेट्स सुनने वाले हैं ना, इसलिए। और यहाँ पर एक बात भी कहना चाहती हूँ, वो ये है कि लेर उम एल्क सिटुआसी खल कख्तसैन, या लेर उम इन एल्क सिटुआसी खल कख्तसैन वांत खल क्वार्ड हक्रियर्ट दोर ये खदाख्तन निक दोर द उमस्तांदख हेदन। You're my love for film partner, see?

Sean, Sweta Pandit, Susie Q en Earl. Ye sab milkar ye geet gaaye hai, you are my love. फिल्म पार्टनर से आपने सुने हैं और फाउन रेडियो ने सुना दी है आपको. जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है. जी हाँ, जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है. कोई अपनों की खातिर अपने अपनों से दूर हो जाता है और कोई अपनों के खातिर अपनों से दूर हो जाते हैं.

जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है। कोई सपनों की खातिर अपनों से दूर हो जाता है और कोई अपनों के खातिर सपनों से दूर हो जाता है। अपने और सपने।

डू यू नो, और गीत का गाने वाला है शान और श्रेया घोषाल। श्रेया घोषाल और शान से ये सुंदर गीत हमने सुने हैं आप ही का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से। ये बस निकाल दिया गया है हर किसी को खुश करने की कोशिश में, स्वयं को मत खोइए। हर किसी को खुश करने के लिए अपने आप को मत खोइए, क्योंकि जिनकी सोच विषैली है, जिनकी सोच नहीं खाती है, उन्हें आपकी अच्छाई नहीं, केवल आपकी कमियां दिखाई देती

हाउसफुल नंबर दो से निकाल दिया गया है राइट नाउ या इसी वक्त। गीत का बोल है राइट नाउ एंड न्यू।

माइन, ओ गर्ल योर माइन, ए लड़की आप मेरे हो। हाँ हाँ, म्यूजिक है इसमें शंकर महादेवन की। सिंगर हम देखे तो लॉय मेंडोंस, हाँ हाँ कुछ अलग अलग का, नए नए कलाकार भी है, नए नए सिंगर भी आ गए हैं। हम देखे तो का हो गए है यहाँ पर हमारे इंस्ट्रूमेंटल वन के, आ गए हमने खोज कर और लेते आए है, तो यहाँ से सुनते हम इंस्ट्रूमेंटल। दुनिया में किसी इंसान से ज़रूरत से ज़्यादा लगाव आपको पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। Het gehechtheid aan iemand kan soms ook vervelend uitkomen. ज़िंदगी में किसी इंसान से ज़रूरत से ज़्यादा लगाव आपको पूरी तरह बर्बाद कर सकता है, क्योंकि सुनिए जी, अक्सर लगाव से बहुत सारी उम्मीदों का जन्म होता है और दूसरों से की गई उम्मीदों अंत में गहरा दुख का कारण बनती है। और आज अक्सर ऐसे लगावों से बचना चाहिए।

संदेश सियुदिन और मिस रेनुका। छलकी न जाए गोरिया छलकी न जाए, जरा धीरे चलो, हाँ हाँ धीरे चलो।

Raymond nam Narayan orkis ran yankaran. ये बहुत पुराना गीत है, बहे अखियों से धार, और ये दो लोग, ये दो गायक जो है मिलकर इसे एक न्यू यश में डार दिल है। चलते हम सुने के लिए गौर पूजो, गौर पूजो।

वेली वी वानिता वानिता वेली के आवाज़ में सुने हम सब कि गौर पूजा गौर पूजा गौरी गणेश हो। मेरे प्यारे सुनने वालों, आपके लिए यहाँ से सभी कुछ अच्छे अच्छे गीत सेलेक्ट करके और आपके लिए यहाँ से चलाया जाता है। दिल खुश हो तो सब आसान लगता है, वो तो सही है कि जब दिल खुश हो तो सब आसान लगता है, हर रास्ता अपना सा लगता है, रिश्ता वही जो हर हाल में साथ दे। सुन ले जी कि रिश्ता वही जो हर हाल में साथ दे, नज़रों से नहीं दिल से बात करे। Bellen de fietser, rijdt drie andere fietsers aan en laat iemand gewond achter. Hazerwoude, ken je samachar, hè? Hazerwoude dorp, even een belletje plegen tijdens het fietsen is voor drie fietsers niet goed afgelopen. De bellende fietser reed s'avonds in een drie andere fietsers waardoor zij zijn gevallen. Een van de fietsers raakte daarbij flink gewond. De veroorzaker van het ongeluk heeft zijn spullen opgepakt en is

वेली वेली वनीता और रेवती राम रूप से सुने हमने माय हार्ट इज बीटिंग कीप्स ऑन रिपीटिंग अनखलेम लाख इज एब्सोल्यूट एन फन द बेस्ट स्कोनहेड्सबहांडलिंगन als je een goed gevoel voor humor hebt en een positieve kijk op het leven, dan is dat

कविता राम किशुन पायल की झनकार फॉलो टू ऑल टाइम्स दिस रिमिक्स रेमंड राम नारायण की आवाज में दीवाना लेके

दीवाना लेके आया है दिल का तराना और तेरे जैसा यार कहाँ सुनेंगे हम। यहाँ से आपिका फाउन हिंदुस्तानी।

तेरे जैसा यार कहाँ गाया गाया गाया है गी के आवास में, और उसके साथ यह है गवन लिए जाए, गवन लिए जाए।

सावन में सजनिया सजनवा गवन लिए जाय। इस बार सुनेंगे हम द रदियो संत देश शिव दिन के वास में।

सविता सिंह और संदेश सिउदीन के आवाज में सुने हम द रदियो न जानी, और यहाँ से लेकर चलते हैं दिल में छुपा के प्यार जनरल इमरान से सुनेंगे।

जनरल इमरान की आवाज में सुने कि दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले रफी साहब के गाए हुआ गीत। फाहुन रेडियो से आपने सुने हैं, आपको यहाँ से सुना दिया गया है। ये सिलेक्शन आपके लिए जो चुनकर और लाया गया है देने सुनने के लिए, मेरे प्यारे सुनने वालों, इस वक्त के लिए हम आपको दिल से धन्यवाद कर रही हूँ।

यही गीत से यहाँ तक मेरी आज का कार्यक्रम हुआ है। मैं आपको दिल से धन्यवाद कर रही हूँ। आप दूर दूर से रेडियो को फॉलो की है और अगर आपको गीत पसंद आया हुआ होगा और आप आगे में पसंद करते हो तो आप इसे ज़रूर से बतला दो, और आपका कोई पसंद हो और आप सुनना चाहते हो तो ज़रूर से अवश्य आप रेडियो पे तार कीजिएगा न्यो सेफ तक द्री सेस ट्वे ट्वे न्यो सेफ सेफ पे 36 22 77 पे। इस वक्त के लिए मैं आपसे इजाज़त ले रही हूँ। अभी थोड़ी देर में हमारा अनाउंसर साथी श्याम पूरन यहाँ से आपके सेवा करेगा। स्वीकार कीजिए सेविका शांता के प्यार भरी नमस्कार। एक शुभ दिन होवे है। एंजॉय योर डे, कीप स्माइलिंग।

0: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
1: Digitaal radio, internet, faro.fm.nl.
2: अहंकार सातवें आसमान पर पहुंचा होता है तब जाकर के किसी की मां को गाली देने की हिम्मत आती है भाई। आज

लिखा जा अभी रजेश के प्रोग्राम आप सुनेंगे। रजेश जो है संस्था आर्य दिवाकर के एक जो है सदस्य है, कुलेखा है ना, और आप सुनेंगे देवी जी जो है संस्था आर्य समाज के एक प्रचारक, अपन जो है धर्म जो है निभा रही है, प्रचार करे अपने धर्म की श्रीमती राम खिलावन चंद्रा और साहिदीन की एक दो जरूर से अभी फरमाई से एक दो सुनेंगे आप। 85 बरस के हो चलिए देवी जी, तो बधाइयां शुभकामना तो देना ही पड़ेगा ना, ओमकार भगवान के कृपा से।

जहाँ भी आप हो खुशहाल रहो सतर्क रहो। आज क्रिकेट बैंड तैयार में आप भाग ले रहे हो एक्स्ट्रा फुटसेक तक बेस्ट मैन से हमारे साथियों कैसे ही दख फंदाक है मोई बेर मौसम के हालात क्या कहूँ मैं आज के दिन के आपसे भैया सुरेन भगवान दिन के तरफ से भी आपको एक शुभ दिन हो पसको तो और कार्य करते चलो वो जो करना है आपको आप जानते हो क्या करना है ना सही राह पे बताना और चलना भी

से हम धरती पे आए हैं हमारी साथियों माँ, क्या है माँ, वही लफ्स जो है दिस एंड वर्ड माँ के, इसी तरह से लफ्जों में ना और धन्यवाद दिया जा रहा है। आप सुनो गौर से, ध्यान धर के, मारे माँ, माँ माँ नहीं होते तो हम कहाँ से होते हमारे साथियों, माँ से तो हम है।

वाह वाह कलाकार सुंदर पोपो साथियों, ये शनिवार के प्रोग्राम है, दोपहर है और आप चुने अपनी स्टेशन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर साथ दख दिए तो देख मई 2020 13 मिनट ओवर

यही कहता चलूं हमारे साथियों, कभी लफ्ज जो है भूल जाऊं, कभी लफ्ज भूल जाऊं, बात भूल जाऊं, तुझे इस कदर से चाहूं साथियों। और ये जिंदगी होता है ना, तुझे इस कदर से चाहूं कि अपनी जात भी भूल जाऊं। कैसे तुम्हें कि कितना चाहता है तुम्हें, हाँ कैसे ये एहसास दिलाऊं कि अगर कहने पे आऊं तो अल्फाज भूल जाऊं। साथियों, ये फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के और दोपहर के प्रोग्राम आप सुन रहे हो, क्या है माँ, चलते सुनते हैं।

हमारे साथ ही हो। दोपहर है, शनिवार का दिन है, 23 मई 2026, 18 मिनुटन ऊपर 1। आज जबकि शनिवार है, तो श्रीमान रॉली मोहन से आप समाचार सुनेंगे, और 2 बजे के बाद में

साथियों, माँ ये पवित्र शब्द है ना, अतिस पाक कहते हैं पवित्र। माँ जो होता है वह शब्द अपनी जुबान से लाओ। क्या है माँ? माँ नहीं होते तो हम कहाँ होते, कहाँ से होते दोस्तों। ओ जब मैंने आपसे बताया कि आज किसी खास वजह से भैया रोली मोहन नहीं पूरे प्रोग्राम प्रस्तुत करेगा, ये बतलाता चलूं मैं। अशुबेल्ट अशबिलीफ दबेटी फुट फंदाग आज उनके कटकन नहीं रहने वाला है। सलिक इमांत अंदेस फेंदा सिक देव शर्मन फेंद ऑफ इमांत।

वाह रे वाह, कलाकार पद्मश्री मोहम्मद रफी साहेब, बादशाहों के बादशाह, सातों सुरों के बादशाह, उन्हीं की आवाज आप सुन रहे हो। कलाकार ने हमेशा जिंदा रहता है। मरहूम कभी नहीं कह सकते हैं हमारी साथियों, जबकि प्रोग्राम में आप वाहन के सुन रहे हो।

अभी आप प्रोग्राम में फरमाइश से सुनेंगे देवी जी जिनकी जन्मदिन था और मना रही आज का दिन परिवार के साथ बहुत ही समारोह के साथ परिवार राम खिलावन चंद्रा साहिब दिन राम खिलावन।

यह भी आपसे बतलाता चलूं हमारे साथियों, और जो है आज का दिन, ये घड़ी, ये पल और शनिवार का दिन है, जबकि यूं ही मैं आपसे ये बता दूं, पाने से ज्यादा खोने का मजा कुछ और है ना, पाने से ज्यादा खोने का मजा कुछ और है। बंद कमरे में रोने का मजा कुछ और है साथियों, हाँ, बंद कमरे में रोने का मजा कुछ और है। आंसू बनाने का लफ्ज, और लफ्ज बने शायरी, उस शायरी में तेरे होने का मजा कुछ तो और है। हमारे साथियों, ये सही गलत बतलाइए, इन बेल असुदत बेल।

या तो इरेने राम खिलावन भी प्रोग्राम सुन रही है। ये देवी जी के तरफ से आपको शुभ दिन, खुशी के दिन, फैन सात दिन।

नया पुराना में फर्क यही होता है ना। ये तो उन दिनों के बात है जब ये प्रोग्राम आप सुनते थे, ये नगमा और गीत संगीत इसी तरह से था। या तो इन राम खिलावन ये देवी जी भी प्रोग्राम सुनते हैं, जबकि उनकी बड़ा बहन जो है और चंद्रा के जन्म में था उनकी फरमाइशें भी आप सुनेंगे।

जी हाँ, इरेना देवी जी जरूर से, और भाई बेई के नाम से जरूर, उनके धर्मपत्नी और उनके बच्चों की तरफ से ने कौम थूत कौम फमकार।

आपके लिए एक शुभ दिन खसेईद दाख मर जाती हूँ। आलोचना नहीं त्याग भी नहीं, फिर भी हंसी खुशी में जीते चलो।

0: wekelijks elke zaterdag tussen 2 en 3 live Surinaams nieuws, actualiteiten met zijn eigen commentaar. Surinaam Raadkumar Rolly Mohan.
1: तो यही तो मैं आपसे बतलाना चाहूँगा कि आज ऐसा ही किसी और ख़ास वजह से आज हमारे भैया रोली मोहन और प्रोग्राम अपने जो है नहीं प्रस्तुत करने वाला है। ये बतला दूँ आने वाले शनिवार के जो है उनकी कार्यक्रम आप सुनेंगे और जो अभी बातचीत हुआ है तन और आपसे यही कहता हूँ मैं बता दूँ कि आप फ़ोन मत कीजिए, आज वो नहीं आने वाला है अपना प्रोग्राम किसी खास वजह से। हमारे साथियों फाहुन रिदू के शाम के प्रोग्राम में शाम नहीं भी दोपहर है, दोपहर 2 बज चुका है और वादा के मुताबिक जो है यहाँ से आप फरमाइश सुनेंगे हमारे साथियों। खुशी का दिन है, घड़ी पल है और शनिवार द्रियन त्वेन तक मई त्वेई दर्शन सेशन तब की 20 मई बीत चुका। जन्मदिन थी और है मना रहे हैं ये देवी जी जो है और चंद्रा राम खिलावन साहिब जी की जन्मदिन थी और आज बहुत ही समारोह के साथ परिवार के साथ बेटी बेटा नाती पोता भाई बहन सब के साथ मिलकर मनाने जा रहे हैं। खुशी के पल है, खुशी की घड़ी है हमारी साथियों, तो बधाइयाँ शुभकामनाएं तो ज़रूर हम देंगे और यही हम सब मिलकर चाहते हैं। लंग लाइफ है, खुद खजौन थे देवी जी।

था और आज बहुत ही समर्पित साथ परिवार के साथ मिलकर और मनाने जा रही है भाई बहन बेई, उनके धर्म पत्नी सभी, उनके बच्चे बहन जो है जितने भी है इरीना इसमें है, इरीना राम खिलावन उनकी पति श्री जुराई जो है ना, यानी और उनकी पति श्री उनकी बाल बच्चे नाती पुत्र सब मिलकर बधाइयां शुभकामनाएं देते हैं और क्या चाहते हैं सब मिलकर यही तो, आपकी लंबी आयु हो, लंग सासलीफन। हाँ चंद्रा जी देवी जी पंडिता है ना और धर्म के प्रचार करती है, सही राह पे आपको भी बताते हैं कैसे कैसे आप सही राह पे चल सकते हो और जबकि आपके कल्याण हो वही तो साथ जाएगा जो ये देवी जी अपना और जाकर आपके राह रास्ता बतलाती है। आर्य समाज जो है उससे जुड़ा हुआ है और ऐसी संस्था जो है इन लोगों की और हमारी भी है ना, सनातन धर्म, वैदिक सनातन धर्म, सनातन वही है सदा से है, जब से आदि से है और जब तक ये सृष्टि रहेगा तब तक ये रहने वाला है साथियों, ये प्रमाण से कहता हूं मैं और वही प्रचार कर रहे हैं देवी जी, धर्म के प्रचार समाज सेवा करती है और बतलाती है आपको भी। जन्म निधास स्पेफन तख्त यार खुबोर्दन या उनकी पति श्री श्रीमान जो सम साहिबिन, बच्चे जितने है खास करके सिलता उनकी और पति श्री, दो बेटियां ना अब एक बेटा, सभी भाई बहन की तरफ से सब परिवार की तरफ से और यही कहते हैं सब खुश है। अब आज ये जन्मदिन बहुत ही समारोह के साथ मनाएंगे और यहाँ से खुद अपने आप के लिए ये देवी जी जो है चंद्रा साहिब दिन राम खिलावन

0: और साथियों, बधाइयां शुभकामनाएं
1: पल पर ले जाना
0: दिया जा रहा है पंडित चंद्रराम खिलावन साहिब दिन
1: ओम बोल
0: पति श्रीमान जो है श्याम साहिब।

0: बेटी नाती पोता सभी के तरफ से
1: नाम भजे
0: सिलता
1: डल में पड़ी पड़ी ओम बोल मेरी
0: साहिबदीन राम खिलावन नहीं ये तो होता है सिलता जी साहिबदीन है पति श्री श्रीमान दिनेश मरिक्स का काजल पिपेन और दो छोटी लड़के खास करके क्लाइन केंद्र सुपुत्र बेटा रामोन और पति उनकी पत्नी जो है रीता पत्र ही ना बिटिया रिनिया उनकी पति और लड़के रेशमा माइकल
1: ओम बोल मेरी रसना
0: बेटा विशाल
1: ओम बोल मेरी रसना घड़ी
0: बेटी गीता और उनकी और पति श्री
1: ओम राम भजे सकल काम तज
0: लड़के अंजनी कास्पर और ऐशा और क्रिस
1: रसना घड़ी घड़ी ओम बोल मेरी रसना
0: सब मिलकर और ये देवी जी के जन्मदिन के अवसर पर बधाइयां शुभकामनाएं और प्रस्तुत करते हैं हमारे साथियों खुशी का दिन है बहुत हर्ष और उल्लास के साथ ये जन्मदिन जो जाकर आज मनाएंगे साथ में

चंद्रा राम खिलावन ने शहीद दिन जन्मदिन था और आज मनाएंगे बहुत ही समारोह के साथ परिवार के साथ मिलकर हमारी प्रिय और साथियों।

Ja, beste oude stadion. Panita Chandra Ram Khlaun Sahibdin ki Janamdin. आर्य समाज के सभी साथियों के तरफ से समस्त परिवार के तरफ से बधाइयां शुभकामनाएं।

0: हमारे साथी हो और फरमाइश आप सुन रहे हो, ये देवी जी की जिनके जन्मदिन था और आज बहुत ही समारोह के साथ मना रहे, आशीर्वाद दे रहा है। कौन है आप बता दो, परिचय दे दो और बोल दो क्या कहना चाहते हो।
1: आदरणीय श्रोताओं की सेवा में सादर सुप्रेम नमस्ते। सर्वप्रथम श्याम जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने ये समय निकाला है और मेरे को दिया है इस जन्म दिवस के अवसर पर हमारे पंडिता साहेब दीन राम खेलावन जी की 50वीं जन्म जयंती है। बहुत बहुत
0: बधाई। वही है
1: 50वीं।
0: वही बोले ना, देख सब कोई के अवसर नहीं मिलता है जिंदगी में ना।
1: बिल्कुल जी, तो बहुत बहुत बधाई के साथ, परमात्मा आपको सभी दिशाओं से रक्षा करे। और 85 वर्ष के आयु में आपने समाज सेवा बहुत की है और आशा रखता हूँ आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे। और एक बात है, जन्म दिवस पर विद्वानों का मत है कि लंबी आयु क्या है, बोले जो कम समय में बड़ा काम कर जाए वही दीर्घ आयु है। तो पंडिता जी इतने कम उम्र में, 85 वर्ष काफी समय है, सूरनाम में तो 50 वर्ष के हो जाओ बोले बुढ़ा हो गया, लेकिन औलाद में 100 तक चला जाता है। तो मैं बहुत बधाई देता हूँ, अंत में एक शब्द कह के विराम देता हूँ क्योंकि मैं गाड़ी में हूँ इस समय, क्या बोलते हैं, कपिलधाम नेहसल में जा रहा हूँ कहीं कार्य के लिए। तो पंडिता जी आपके लिए यह है,

0: जन्म लेंगे। अभी इधर साल खबर वर्धन मसवास पंडिता साहेब दीन जी वार साल सैन ऑफ द वे राउंड। श्याम जी हमारे बगल में भारत से अतिथि बैठे हुए, दो शब्द कहना चाहेंगे?
1: जरूर जरूर पंडित जी, लेकिन आप विदाई लेते पहले बोल दे, एको एको शेर बोल देना, एको एको एको आप बहुत जानते हो छोटा वाली।
0: जन्मदिन है तेरा हम देते बधाई, जन्मदिन है तेरा, जन्मदिन है तेरा, मनन दिन आया हम देते बधाई। पंडिता जी बहुत बहुत बधाई हो।
1: हाँ, अतिथि अतिथि जो आपके पास बैठा हुआ है कुछ कहना हाँ, चाहता है कहने दो।
0: अरे प्रोफेसर डॉक्टर आचार्य विजयपाल जी, डॉक्टर जी
2: नमस्ते। पंडिता जी की दीर्घ आयु के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतनी लंबी आयु, अभी भी आपकी आयु लंबी आयु है, दीर्घ आयु में ही आती है, और आपने अपने जीवन में बहुत पुण्य कार्य किया, समाज सेवा की, पंडिता के पद पर रहते हुए बहुत ज्यादा समाज का उपकार किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। आगे के लिए भी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम रोज संध्या में बोलते हैं, जीवे म शरदय सतम भूयश्च शरदय सता। 100 साल तक आरोग्य पूर्वक निरोग रहते हुए, स्वस्थ रहते हुए जीवन यापन करें, और भूयश्च शरदय सता, 100 साल के बाद में भी आप दीर्घायु प्राप्त करके इसी प्रकार स्वस्थ जीवन यापन करते रहें, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: दोनों हाथ जोड़ के शीश नवाए के साथ से प्रेम नमस्ते।
0: नमस्ते जी, धन्यवाद श्याम जी।
1: नमस्ते बनी जी।
0: नमस्ते नमस्ते।

0: जन्मदिन नहीं है देवी जी के, और ये जन्मदिन बहुत ही समारोह के साथ मनाएंगे हमारे साथियों, और जबकि वो देवी जी 85 तख्तियार हो चली है, उनकी आवाज़ जरा से भी आप सुन लो ना, और समाज सेवा कर रही है, अपने कर्तव्य निभा रही है, जो है समाज सेवा करती है, वो रास्ता बतलाते कैसे आपको, और जाकर हम वही सब चाहते हैं ना, क्या चाहते हम सब मिलकर, और स्वर्ग चाहती है, वही राह बतला रहे देवी जी। दोनों हाथ जोड़ के सादे से प्रेम नमस्ते।
1: नमस्ते जी, कैसे आप हैं? सब ठीक है? आपके प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, मैंने फरमाइश सुनी, पंडित जी को सुने, अब विदेश से आए हुए पंडित जी भी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग के। कहते हैं ना, जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीना से नहाते हैं तो वो इतिहास बदलता है। यही शब्द से मैं पंडित लोगों को धन्यवाद करती हूँ
0: जी, और आपको समस्त परिवार की तरफ से आपको बधाइयां, शुभकामनाएं, लंबी आयु हो, और इसी राह पे चलते चलो, और लोगों की समाज सेवा जो आप कर रहे हो, धर्म के प्रचार कर रहे हो, खास बात जो है धर्म के प्रचार करना चाहिए ना।
1: जरूर करूंगी, बेटी भी हमारी सीख रहे हैं ईसाई, तो वो लोग भी कुछ वैदिक धर्म के कार्य करेंगे हमारे बाद में, हमारे रहते हुए भी। अच्छा,
0: परिवार कितना है आपके? आपके पति श्री श्रीमान श्याम जो है, और साहेबदीन, बाल बच्चे कितने हैं बता दो?
1: साहेबदीन है, मेरे पति है श्याम साहेबदीन, मेरे चार बच्चे हैं, तीन बेटियां शीलता, रामन, रीनिया, गीता, और
0: कितना क्लाइंट केंद्र बाहर?
1: सात गो क्लाइंट केंद्र है, जो है दिनेश, काजल और प्रिया, फिर है दूसरी बेटी के रीनिया के बच्चे है सोवी और मेशन, फिर गीता के बच्चे ऐशा और अंजनी, अंजनी और ऐशा, और अख्तर क्लाइंट केंद्र है नौ गो, चार गो बेटे हैं और पांच बेटियां।
0: संस्कार तो आप दे रहे हो, परंपरा परम जो हम लोग के है, हम लोग लेके आए हैं, और परिवार राम खिलावन कितना बड़ा परिवार है, और जो वही हम लोग सिखाते क्या जहाँ तक हो सकते संस्कार देते हैं बच्चों को ना,
1: देते देते हैं। वैसे तो बच्चे यहाँ पर बहुत पढ़ लिख के बहुत विद्वान बनते हैं, लेकिन अपना धर्म भी थोड़ा संस्कृति भी लेके लेकर के चलना चाहिए, वो भी सीख रहे हैं, अभी थोड़े बिजी रहते हैं स्कूल आदि में ना, काम करते हैं, लेकिन थोड़ा समय मिलने पर वो भी कुछ ना कुछ सीखेंगे, करेंगे जरूर, और कर रहे हैं। और फिर से मैं पंडित जी को बहुत बहुत दोनों पंडितों पंडित जी लोगों के धन्यवाद करती हूँ, और मेरी बहने जो भी रेडियो पर फरमाइश दिए इराना यानी उनके बच्चे, उन सबों के बच्चे, और सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
0: मत भूलना अपने भाई बेई को,
1: बेई भी बेई, हाँ बेई ना भाई है, और परमात्मा ने भी मुझे एक तोहफा दिया है, नजराना दिया है कि इतना मौसम अच्छा हो गया है मेरे जन्मदिन पर ना, तो मौसम के कारण से लोग और ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं, और ना सब और अच्छा से चलता है।
0: देवी जी आपके मैं अपने तरफ से भी और बधाई देता हूँ, और यही परमपिता परमेश्वर ओमकार भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपकी मनोकामना जाकर पूर्ण हो। देवी जी
1: ईश्वर करे आप सबका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो, तो जरूर ईश्वर कुछ मदद करेगा ना, जरूर से, और तंदुरुस्ती रहेगा तो फिर भी
0: मिलेगा। ओके, खुद दन अभी जो कोई बैल कर फिर ऐसे फिर मैं ऐसे दिलो इस तरह एंड यू विल फील स्टेर मा हो मत है खुद एक विल यू प्रोग्राम सो बहुत एक लग, और जो फरमाइश एक आदमी है जरूर, या और आपके भाई बहन की तरफ से
1: या जी जी, और आप लोग भी, आप तो मेरे परिवार है ना, मेरे फुआ के पोता जी है, नेव के बच्चे बच्चे हैं आप
0: जी। हाँ देवी जी, दोनों हाथ जोड़ के सादे से शीश नवाए के सादे से प्रेम नमस्ते।
1: अरे बाप रे, अच्छा मेरे तरफ से भी इसी तरह से।
0: अच्छा
1: धन्यवाद।

0: स्पेशल पनीता जो है चंद्रा राम खिलावन साहिब दिन की जन्मदिन का अवसर पर खुद प्रणाम के लिए और समस्त परिवार की तरफ से ये देवी जी की जन्मदिन को शुभकामनाएं देते हैं। लंग लाइफ इन खुद खसौन थे की ही सब चाहते हैं ना। ये ओमकार भगवान से प्रार्थना करते हैं परिवार भी सब मिलकर पति श्री श्रीमान श्याम जो है साहिब दीन
1: जगत से बोल पाप की खोलूंगा चाहे
0: बाल बच्चे जितना है
1: केंद्र
0: उत्लाइन केंद्र भाई बहन सब मिलकर बधाइयां शुभकामनाएं।

0: हमारे साथियों, ये प्रोग्राम फाहुन की आप सुन रहे हो, ये शाम के प्रोग्राम है। और जाकर यहाँ पर खास करके और जो बधाइयाँ देते हैं लोग और सुन रहे प्रोग्राम, तो यहाँ पे श्री पूज्य पंडित जो है और जय रामनाथ जी कुछ कहना चाहता है, तो पढ़िए जाकर यूं ही आप जो कहना चाहते हो कह दो। और जबकि जन्मदिन था और आने वाले दिनों में मनाएंगे ये देवी जी, और जाकर पंडिता जो है राम खिलावन साहिब दिन जो है चंद्रा उनकी जन्मदिन के अवसर पर। हाँ नमस्ते, और मेरे तरफ से भी नमस्कार है आपको, दो रहा जोड़ के शीश समाय के साधे से प्रेम नमस्ते पंडित जी।
1: हाँ नमस्ते नमस्ते, आज पैटा जी का नाम है सामने मना रहे हैं अपना जन्मदिन।
0: हाँ, कल मनाएंगे। और उनके जन्मदिन तो हो गया, 20 तारीख के था और अरे कल जाकर
1: मना रही है, आज साल में मना रही है ना। हाँ, उनको निमंत्रण करके, मुझे भी निमंत्रण मिला था लेकिन जब मुझे प्रखोर से नहीं है, साइकिल चलाता हूँ लेकिन जाना के लिए, तो सोचा कि उसे बधाई दे दिया हो, लेकिन फिर भी आज जो है बहुत बड़े रूप में मना रही है, तो बधाई है। और
0: 85वां जन्मदिन ना, हाँ, यार समाज सेवा करते हैं, धर्म के प्रचार करती है देवी जी,
1: तंदुरुस्त दिखा रही है, खसोन दिखा रही है, बहुत अच्छी बात है। आशा की लंबी आयु हो, कम से कम तो 100 वर्ष की उम्र प्राप्त हुए।
0: हाँ, उनके मनोकामना जाकर भगवान ओमकार भगवान अवश्य पूर्ण करें ना।
1: हाँ, जीवन में श्रद्धा से बोलते हैं उनके धर्म में ना कि 100 वर्ष तक जीते रहो लेकिन स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे। और पंडिता जी समाज के लिए बहुत काम करते भी है, यहाँ त्यौहार पे भी आती है, आश्रम मंदिर भी आती है, तो बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज एक शुभ दिन है, कनाब सबसे साथ मिलकर मना रही है ना, तो बहुत अच्छी बात है। मेरी तरफ से बहुत बधाई हो आपकी, और लंबी आयु हो, स्वस्थ पाए जीवन हो, कम से कम तो 100 वर्ष आप बहाल कर लें परमात्मा की कृपा से, क्योंकि परमात्मा के आशीर्वाद रहेगा तो हम जरूर आप हाल कर लेंगे,
0: आपको हृदय से धन्यवाद और जाकर बधाई या शुभकामनाएं, और उनकी मनोकामना जाकर ओमकार भगवान अवश्य पूर्ण करें ना।
1: जरूर जरूर जरूर।
0: नमस्ते पंडित जी।
1: नमस्ते स्वामी, नमस्ते नमस्ते।

आवाज जो आप सुन रहे हो श्री पंडित सुरजपाल और जन्मदिन के अवसर पर, ये देवी जी के जन्मदिन था, मनाएंगे कल। फिर भी परम पिता परमेश्वर से यही हम प्रार्थना करते हैं, पंडिता चंद्रा राम खिलावन जी साहिब दिन के लिए लंग लिफे खुद खसौ थे।

0: तो हमारी साथियों और फरमाइश आप सुन रहे हैं, जबकि देवी जी जो है पंडिता साहिबीन राम खलावन के जन्मदिन था और ये जन्मदिन बहुत ही समारोह के साथ मनाते रहे हैं, खास करके कल जो जाकर मनाएंगे परिवार के साथ, भाई बहन समस्त परिवार के साथ मनाएंगे। और धर्म के प्रचार ये देवी जी कर रहा है, अपनी कर्तव्य जो निभा रही है, जो हमें करना चाहिए अगर जिंदगी में जीना है, जिंदगी जीना है और आप क्या चाहते हो वही तो मिलेगा, चोरी चपाती और चंदारी नहीं, फिर भी सच्चाई से जियो और धर्म के प्रचार करते चलो जहां तक हो सके हमारे साथियों। जबकि पंडिता जो है साहिबीन जो है चंद्रा राम खिलावन साहिबीन के जन्मदिन के अवसर पर, हाँ तो किसी ने फोन करके कुछ कहना चाहती है, चल के सुनते हैं इस वक्त इसी पल इसी घड़ी। और जो है उनकी बहन जाकर जो है यानी जी आप कहना चाहते हैं, यू मेंट लाइफ एंड अर्थ सेंडिंग है।
1: ओके, एक वो ook mijn oudste zus feliciteren gaan, van harte gefeliciteerd Chandra Sahib Duram Khilawan. Ze heeft ook heel veel voor ons gedaan. En ze wordt heel hartelijk bedankt voor alles wat ze voor ons heeft gedaan.
0: Ja, ze gaat nog meer voor jullie doen. Ze gaat nog meer voor jullie doen.
1: Ja, zeker weten, zeker weten. En ik wou ook zeggen van in goede gezondheid dat ze nog verder kan.
0: Kuch Hindustani bolde na?
1: Ja, बहुत बहुत जन्मदिन के बधाई है हमारे बड़ा बहन के, और 100 बरस के उम्र हो गए और ज्यादा हो सके तब दैट्स अ मेड इन ऑन माह ब्लाइफ सेन एंड या मोर
0: वही तो हम परपिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, लॉन्ग लाइफ है, खुद खुशहाल है।
1: या दैट इज इट, या 40 का

0: चंद्रा राम खिलावन
1: दयानंद का पता मैं चांदू और तारों से पूछूंगा दयानंद।
0: बधाइयां शुभकामनाएं समस्त परिवार की तरफ से, बेटी बेटा नाती पोता भाई बहन सब मिलकर बधाई देते हैं और उनकी संस्था जो है आगे समाज के जो है आप सुने ना लोग जो सुनते हैं इस वक्त फोन करते हैं क्या कहूं मैं बधाइयां शुभकामनाएं लंग लाइफ है खुद खुश होते यही मैं अपने तरफ से कह सकता हूं ना।

तो मेरे साथियों जबकि फरमाइश आप सुन रहे हो बैलेंस दी बैले यू मस्ट न्यू इन बैलेंस यू दैट विल एफ तो जबकि ये देवी जी के जन्मदिन है और पंडिता जो है खास करके चंद्रा राम खिलावन साहिदीन की जन्मदिन था और मनाएंगे कल जाकर बहुत ही समारोह के साथ परिवार के साथ मिलकर बधाइयाँ शुभकामनाएं देते हैं एंड बैलेंस द बेल कॉन्स्टेंट बेस्टमैंस इन बेल असुदातवेल इन बेल और यही जरा एक दो सेकंड में इंतजार करूँगा असुवेल बेल और जबकि चल के सुनते हैं किसी ने फोन कर चुका फिर से तो चल के सुनते हैं हाल रील खुद में दख या इवेंट लाइफ है दर्ज सनी या बात से यू हेलो ये भी होता है हमारे साथियों फिर भी फरमाइश आप सुन रहे हो ये देवी जी के जन्मदिन था और मनाएंगे बहुत ही समारोह के साथ परिवार के संग हर्ष और उल्लास के साथ ये जन्मदिन कल मनाएंगे और लोग भी फोन करके ये भी कहते हैं ना चल के और बधाइयाँ शुभकामनाएं देते हुए खुद अपने आप के लिए और जो है श्रीमती चंद्रा राम खिलावन

0: पर साथियों पर प्रोग्राम में फरमाइश आप सुन रहे हो, जबकि श्रीमती जो है जाकर पनीता और शाहिदीन के जन्म देते तो पलवार जो है उनकी जो है जाने वाले और उनकी बधाइयां भी देना चाहते हैं। रेडियो के बाद में कितने लोग ने फोन किया, फिर भी छोड़ के सुनते हैं। यहाँ पर कौन है? हाँ, इरेना जी, वेट लाइफ एंड एक्सटेंडिंग उमा पढ़ाते खातु खान।
1: नमस्ते श्याम जी, बहुत बहुत धन्यवाद की ये खलीफत है हम लोग के मिले फैली शेयर करे के। वो मेरा बड़ा दीदी है, दिल से हम लोगों के बहुत प्रेम और प्यार सब चीज देला और खुशौत है ओके फैली शेयर करेला।
0: अपने अपने अप, आप आप अपने कर्तव्य अपनी प्लेक्ट निभाते हो ना।
1: छोटा बहन होते कारण ना वो बड़ा बहन है जैसे माँ तरह हम लोग के फर्ज है कि ओके माय घर पे इस बार देर करे के है।
0: या प्लास ले इस बार सिर्फ प्लास नहीं है, माय के समान है, माँ है जैसे, माँ जैसी है।
1: ओहि से लांस दे सब है वेल मैं दीदी फनहार तो फेलिसिटेर हे आर फेल गेसोंड है एंड मोगे गॉड हर सेगन तो द 100 ऑफ मीर इन गुड गेसोंड है।
0: या गुड, धन्यवाद आपको देवी जी। और मैं सोच रहा हूँ कि वो सुन रही होती इस वक्त जो सुन रही हो गई, और ये आपके और मैं अपने तरफ से भी धन्यवाद देता हूँ। फहार तक फिर से रंग ले फिर खुद खसों दे दत में से फोर हार तो
1: वो जरूर सुने एंड नाम इज मैं मम्मा एंड महिल हसन केंद्र क्लाइंट केंद्र आलमाल फेलिस तेरे वे हार फन हार तो
0: खुद थैंक यू वेल इरेने राम खिलावन ने
1: या
0: जुराई
1: जो राय मेरा पति है।

0: चंद्र राम खिलावन साहिदीन जन्मदिन है ना, खुशी के दिन है और बहुत ही समारोह के साथ कल मनाया जाएगा। था डेट यानी कि 20 तारीख की मुझा और आज तो हो चला है दृढ़ तो देख, लेकिन कल ये बहुत ही समारोह के साथ परिवार के संग मिलके मनाया जाएगा। समस्त परिवार खुश है, बधाइयां देते हैं सब मिलकर, जितने भाई है बहन है यानी बेई उनकी धर्म पत्नी अलग लाइन केंद्र जो है सिलता
1: नाम वेदों के दुनिया में सर जाएगे, चाके हर दिल में भर जाएगे।
0: अपने माता श्री को बधाई देते हैं,
1: नाम
0: सब खुश है ना। अब यही चाहते लंग ले फे खुद खसों थे
1: भर जाएंगे नाम वेदों के दुनिया।
0: अपना कर्तव्य निभा रहे हैं देवी जी, धर्म के प्रचार करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, वही तो चाहिए ना। क्या लेकर आए हैं? लेकर वही जाएंगे जो आप कर्तव्य करेंगे, अपना कर्म। हाँ हाँ

बेटी बेटा भाई बहन से मिलकर चंद्रा राम खिलावन। जन्मदिन था और मनाएंगे बहुत ही समारोह के साथ कल मिलकर ना।

0: वही तो है, अपने बारे में नहीं सोचते हैं और समाज सेवा करते हैं, धर्म के प्रचार करते हैं। और ये देवी जी वही कार्य कर रही है, जबकि जन्मदिन था और जो है जरा से सुन लो ये टेलीफोन नंबर भी और चल के सुनते हैं, जबकि हमारे भैया एफर्ट के यादर और जन्मदिन के अवसर पर इवेंट लाइफ एंड ऐसा ने मने एफर्ट गयाधर एंड डार एफर्मात मत याद फन। ये देवी जी जो है खास करके चंद्रा जी के और जन्मदिन था वो जाके स्पेपन तख्त यार एंड मोर का खास फिर है, तब बधाई दे दो इस वक्त इवेंट लाइफ एंड ऐसा।
1: Oh, zus, u wordt van harte gefeliciteerd door Evert Gejade. Ik wens u nog heel veel gelukkige jaren.
0: Bol, we luisteren.
1: Ja. Hij zei, als er namen een kiko ik gefeliciteerd kan ik via. और इतना उम्र के होई गए ने बहन और अब तक उसने काम करते हैं, समाज का काम करे हैं, सब चीज करे हैं। What an geweldig vrouw is sir. ऐसा बहन ना मिले सबको ही कहना।
0: समाज सेवा करे अब तक अपना कर्तव्य, जब हम लोग कुछ न लेके बोले आए हैं, कुछ न लेके जो ही जो कार्य करके पे कर्म वो लेके जाएंगे जरूर ना।
1: जी हाँ। अच्छा भैया आप
0: वही खाता
1: कर रहे हो?
0: या खुद और खसे खंडा। अच्छा
1: अच्छा आपको भी
0: खसे खंडा
1: भैया
0: आज बिलीव।
1: अच्छा

इस नंबर पे फरमाइश जो है ना, खुशी के पल, खुशी के घड़ी, श्रीमती चंद्रा।

0: स्वामी साथियों, प्रोग्राम में जो फरमाइश आप सुन रहे हो, तो ये देवी जी जो अपना कर्तव्य निभा रही है, समाज सेवा करती है और अपने धर्म के प्रचार करती है पंडिता, जबकि परमपिता परमेश्वर के कृपा से, ओमकार भगवान की कृपा से आज उनकी जो अवस्था हो गया है तख्ती यार, और इसी खुश अवसर पर कुछ वे ये देवी जी कुछ कहना चाहती है। लाइफ एंड अर्थ सनेक देवी जी, फिर से एक बार दोनों हाथ जोड़ के साथ से प्रेम नमस्ते।
1: नमस्ते जी, सबको नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग फरमाइश सुने और मुझे बधाई दिए, उन सबको भाई बहन के बेटी बेटा सब को बहुत बहुत धन्यवाद। एफत जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके बधाइयां सुनी हूँ, धन्यवाद भाई जी। और मेरे बेटी आदि बेटा सबको के, और बहने इरेना यानी सभी गीता आदि सब सुन रहे थे, प्रिया जी भी। तो मैं थोड़ी से एक छोटी सी कविता सुनाती
0: हूँ एकदम से। चलो, ये उसे नहीं मिलेगा फिर
1: नहीं, और फिर अपने जन्मदिन के उपलक्ष में।
0: हाँ बोलो ना देवी जी।
1: अच्छा, गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न कर, तकदीर में जो लिखा है उसे कभी फरियाद न कर, ना जो होगा वो होकर रहेगा, तू कल के फिक्र में अपनी आज को बर्बाद न कर। हंसते हंस मरते हुए भी गाता है, मोर नाचते हुए भी रोता है, ये है जिंदगी का सच, ये है जिंदगी की फंदा, बस जिंदगी का फंदा है ये। कभी दर्द की छाव, कभी खुशियों की धूप, कभी जीत की आशा, कभी हार की निराशा, बस यही तो है जिंदगी की छोटी सी परिभाषा। यही तक कह के मेरा हो गया है। और आपको धन्यवाद, सभी को धन्यवाद भी जो लोग फोन किए फिर से।
0: Er hebben een aantal mensen gebeld, maar goed, niet allemaal zijn in de uitzending gekomen. Palwar Jokus, ik heb Palwar Kus Ram Klaunen, zei op de antenne.
1: Oh, ja,
0: ook heb Palwar Biba, heb ik van Kertje. Maar ze willen niet live in de uitzending komen. Goed, ik laat ze allemaal. Familie Ram Klaunen is groot, hè? Een grote familie.
1: Ja, zeker. Grote familie. Maar zij ook heel hartelijk bedankt. Ik ben blij voor ze. Dat ze toch aan me hebben gedacht. Ja. En dat ze leuk vinden.
0: Goed.
1: Bedankt.
0: Oh, aapke jenemnieuw concert. Bij mijn terfje aapke bohutje bedankt. Ja, shubkamne. Lambia. En goede gezondheid. Lang leven. Tja, Devi Ji.
1: Lang leven. Ja, dat is het weer. Hè. Die goede gezondheid. Ja. Jep tak jind. Apne pairo per chal sake. Tep tak jindi chahi. Oh, lamba jindi lekar. Jep khatia per pade ra. Tep. कुछ फायदा नहीं, नहीं वैसा जिंदगी नहीं चाहिए मुझे। ये जिंदगी चाहिए कि जब तक मैं जीऊं अपने पैरों पर।
0: ये खुशी के बात है, देखिए आपके अवस्था 50 इस पे फिर तक यार, और आप जो है जाकर धर्म के प्रचार करते हो और अपने अपना कर्तव्य इंसान के नाते जो दुनिया पे आए हो तो समाज सेवा भी कर रहे हो, उसके लिए मैं, जबकि मेरा रिश्ता आपसे फुआ और बेटवा के है मेरा, तो यूं ही मैं कहता हूँ आप इसी तरह से और सच अपने बाल बच्चों के दुनिया को यही रास्ता राह बतलाते चलो देवी जी, करते हो तो मेरे तरफ से आपको हृदय से धन्यवाद मैं देता हूँ।
1: धन्य है स्वामी दयानंद जी की आज हम स्त्री जाति कुछ बोल सकते हैं ना। वैसे तो हमें पढ़ना लिखना में ना ही था कि लड़की जात के पढ़ाना नहीं चाहिए, तो लड़की जात क्या करती, अब पढ़ नहीं सकते थे ना हमारे जमाने। लेकिन धन्य है स्वामी दयानंद जी के कि जो आया और हम लोगों के ज्ञान दिया, सबके आर्य समाज बनाया। आर्य समाज से फ्रे नखेंग है इसकेन धर्म मारतीसन फ्रे नखेंग, जहाँ पर सब कोई आ सके, सब कोई ज्ञान प्राप्त कर सके और हम खुद सोच सकते हैं, देख सकते हैं अपने बुद्धि से कि कोई क्या चीज हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। जो किसी का मौत हो गया, मृत्यु हो गया, तो वो फिर आपस फिर आकर जी नहीं सकता है। मृत्यु हो गया तो हो गया, जैसा कि यूनिवर्सिटी आदि में ये सब बात बच्चे सीखते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो गलत बातें जो हमें सिखाया जाता है उस पे ध्यान देना, और अपने मनुष्य के जन्म जो मिला है वसुधैव कुटुंबकम, तो हम मनुष्य के कर्तव्य निभाएं, हमारे पास बुद्धि है, हैरसन है ना, हम मनुष्य के पास ही ये हैरसन है कि जो हम छोटा से होकर के जैसे स्कूल जाते हैं, फर्स्ट क्लास टू क्लास से दो रोग पढ़ते जाते हैं, इन्फेक्शन तक पहुंचते हैं, ये बुद्धि के कारण। जैसे कि एक डॉक्टर हो तो डॉक्टर जब तक सीखेगा नहीं तो ऑपरेशन नहीं कर सकेगा, कुछ नहीं दवा दारू नहीं कर सकेगा, तो हमें सीखना पड़ता है, हमें ऊपर उठना पड़ता है। वैसे तो हमारे जीवन जैसे है वैसे जानवरों के भी जीवन है, तो एक बराबर है, वो लोग भी जन्म लेते हैं, उनके माता पिता बच्चों के पोषण पालन करते हैं और बूढ़े होते हैं, मृत्यु हो जाता है। उसी तरह से इंसान के भी जन्म लेते खाते पीते जीते रहते हैं बिना बुद्धि के, फिर मृत्यु हो जाता है। लेकिन इंसान ही एक चीज है जो जीव है, जिसके पास बुद्धि है, जो पढ़ लिख कर और अपने को ऊपर उठा सकता है, अपने को एक मनुष्य बना सकता है। वैसे तो जैसे कहा जाता है कि ये लोग मनुष्य बनो, तो मैंने कोई बोलते हैं कि मनुष्य तो हम है कैसे मनुष्य बने, इसका मतलब ये है कि जो जन्म मनुष्य के मिला है पढ़ लिख करके विद्वान बनो और अपने बच्चों को अपने परिवार को सही रास्ता दिखाओ, सही मार्ग दिखाओ। अच्छा यही तक मैं कह करके।
0: दो संस्कार आप दे रहे हो अपने बाल बच्चों को और अपने परिवार को, तो वही तो है आप जो कर रहे हो। यूं ही आपके मूड में बरकर नहीं कर रहा हूं, आप धर्म के राह पे चलकर और वही शिक्षा जो दिए हैं, तो भगवान जा ओमकार भगवान जाकर आपकी मनोकामना पूर्ण करे देवी जी।
1: जी अच्छा धन्यवाद, ईश्वर आपको भी खूब शक्ति दे कि आप प्रचार कर सके। बहुत अच्छा लगा आपके भजन जो आप घुमाए हैं सब स्वामी दयानंद जी के, बहुत अच्छा, आपको भी धन्यवाद।
0: दोनों हाथ जोड़ के सादे से प्रेम नमस्ते देवी जी।

0: हमारे साथियों पंडिता चंद्रा राम खिलावन साहिदीन के जन्मदिन पति श्रीमान जो है श्याम साहिदीन के तरफ से अपने और धर्म पत्नी के जन्मदिन के अवसर बहुत से बधाइयां शुभकामनाएं और दुनिया में जितना प्यार है लेकर उनकी कदम अपने देवी जी के और कदमों में लड़के सभी जो है दमाद पतो जितने हैं ना सिलता उनकी पुत्र पुत्र बेटा दिनेश मरिस्का ब्री क्लाइन केंद्र डॉक्टर काजल पिपेन और दुबई जो मैं देख रहा हूँ बिटिया जो प्रिया है और बेटा सुपुत्र बेटा रामन उनकी धर्म पत्नी रीता पतोहिया ना बिटिया रिनिया उनकी धर्म पत्नी पति श्री रेशमा माइकल और तुम्हें के क्लाइंट केंद्र है ना बेटा विशाल और आगे में चलकर जो है देखा जाए तो किसी ने फोन कर बैठा चल के सुन लेते हैं जरा से हेलो खुद दख हेलो
1: हेलो
0: यू बेंट लाइफ इन अर्थ एंड यू गाट यू गांग आज यू व्हाट विल से यू मग प्राटे Ja, ja. Gaat u gaan. U mag praten.
1: Ja, ik wil haar heel hartelijk feliciteren met haar 85ste verjaardag. Ook namens mijn hele gezin. Namens mijn kinderen, Vitas en Risma. Mijn man Bam Binder. En twee achterkleinkinderen voor hun manietje. Dat zijn Sobi en Mason. En we hebben het eerste gedeelte van mama's verjaardag al gehad met een houden. Dat is heel leuk en heel fijn gedaan. En wij wensen haar nog heel veel gezonde jaren. Dank u wel.
0: Goed, u ook van harte bedankt. Oude ook het jenemdien kousen per bedhanya shubkaam naai kuch Hindustani bolde na.
1: Ik ja bolu, bout bout bedhai mere mata ji ke liye. Ja, dat was het.
0: Jones en Skar, de opvoeding wat ze heeft gegeven, ook zoals u heeft opgevoed, hè? Jones en Skar deze, vandaar dat ik even vraag in de stad, kunt boeken, want we zijn geen Nederlanders, hè?
1: Nee, dat klopt.
0: We zijn in feite, ik bedoel, de identiteit dat je in Nederland kent, maar veel meer, omdat je संस्कार जो मिलल है हम हिंदू जाति के और हम लोग जो करीला हम लोग के पचाव और जो माँ आपके माता जी जो है संस्कार दिया है और जो कर रही है समाज सेवा कर रही है वत्स दूत डेथ इज द प्लिक्ट वन द मेन्स एगलिक हीट फॉर सेव ऑफ दिस आर्थ को मना कि आए के हम लोग कुछ और जो है हम लोग के धर्म के प्रचार कर रही है ये देवी जी आपको धन्यवाद आन दक्षित हेफ एन एन गजीगन दाख
1: या शेकर नमस्ते
0: नमस्ते देवी जी

तो मेरे साथियों प्रोग्राम में यहाँ तक आप फरमाई से सुने। जन्मदिन पंडिता की थी और कल जाकर मनाएंगे परिवार के साथ मिलकर, तो उनको बहुत से बधाइयाँ देते हैं, शुभकामनाएं, और जाकर ओमकार भगवान उनकी मनोकामना वैसे जो है पूर्ण करे, ये हम सब चाहते हैं ना। लांग लाइफ है खुद खुशन थे और धर्म के प्रचार करते चलो, अपनी कर्तव्य इंसान के नाते निभाते चलो। देवी जी

तो समस्त परिवार जो है, पति श्री श्रीमान जो है, शायद दिन शाम अपने धर्म पत्नी के जन्मदिन को सब पर बधाइयां देते हैं। लड़के हैं जितना है, और दामाद पतो बेटा, और जो जाकर हाँ पतो हिया, सभी लड़के केंद्र क्लाइंट केंद्र मिलकर नानी आजी को बधाइयां देते हैं, और यही सब परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। लॉन्ग लाइफ है, खुद खुशों थे बेटा जो है विशाल, अंजनी कास्पर और ऐशा और क्रेश भी शामिल कर आपके जीवन जो है स्वस्थ और सफल रहे, यही हम परमपिता परमेश्वर के से आपके लिए प्रार्थना करें हैं देवी जी। तो हमारे साथियों, फाहुन के कार्यक्रम आप सुन रहे हो, शाम के प्रोग्राम में जैसे आपको मालूम है, और आज का दिन तारीख जैसे है शनिवार का दिन, को चला है और ऊपर हाल फिर अभी भैया राजेश से प्रोग्राम आप सुनेंगे 4 बजे के बाद में, कुलेखा राजेश के कार्यक्रम अवश्य आप और जो इंतजार कर रहे हो, तो अभी राजेश अपना प्रोग्राम आपके लिए प्रस्तुत करेगा, कुलेखा राजेश बदलू जी, और जो वो भी जो जुड़ा हुआ है संस्था आर्य समाज से, मंदिर है मंदिर में जाइए दोस्तों, और बतलाइए अपने बाल बच्चों को, वही शिक्षा दीजिए, बतलाइए जो करना है बच्चों जो है, बच्चे जो है खास करके, और जो पंडिता जी भी कर रही है ना तो यहाँ पे साथियों

यह आवाज जो आप सुन रहे हो ये राम प्रसाद ये राम खिलावन। साथियों शुभ दिन, सत्य रख रहो, सुरक्षित रहो, विश्व सिख पास खुद अपी सेल्फ।

तो हमारे साथियों आज के प्रोग्राम जो है शनिवार का दिन है जैसे आपको मालूम है, और यहाँ मैं आपका सेवक श्याम पूरन आपकी सेवा किया, यही सोचा हूँ कि जिन अंदाज में अपना प्रोग्राम मैं आपके लिए प्रस्तुत किया आपको पसंद आया हुआ होगा। गलतियाँ हुआ, जुबान से ऐसा कोई वचन निकल गया तो माफ़ कर देना साथियों, क्योंकि इंसान हो, भगवान नहीं हो, भगवान से गलती नहीं होता, इंसान से हो सकता है ना, जैसे आपको मालूम है। फिर भी और आपको जो जिन लोगों ने हमारे प्रोग्राम में साथ दिए मेरा और इधरीन फहारत बदंकह सेखंद दख फेंद वीकेंड, मैं कहता हूँ साथियों आने वाले दिनों में जब जैसे अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा आपकी सेवा करने के लिए तो मैं उपस्थित रहूँगा। फिर भी वही शनिवार का दिन जो है आने वाले शनिवार का फिर मैं उपस्थित रहूँगा, अगर कुछ कहना तो अवश्य कह सकते हो। और हमारे प्रोग्राम में कुछ परिवर्तन लाना है, फरानी लाना दी, यूँ ही आप फ़ोन करके बता सकते हो साथियों। सेखंद और दख कहता मैं अभी से और इधर के और दुरहा जो के शीश नमाए के आपको सादे से प्रेम नमस्ते राम राम करता हूँ साथियों, और जिंदगी बाकी रहा तो फिर जरूर कभी मिलेंगे, वरना आप जानते हो जिंदगी आना जाना है ना।

0: ये खास नंबर जो है पसंद किया है।
1: आसमान है चलती
0: सुपुत्र बेटा जसवीर पूरन
1: फिर क्यों मुझको लगता है।
0: हाँ जसवीर के पसंद है, उनकी फेवरेट सॉन्ग है हमारे साथियों।

वाह वाह कलाकार, प्रार्थ है ऑन स्टेरफ्लेक नेट व्हील एक्ट नेट व्हील बेस्ट लाइसेंस संगीत में

बारे में आपको क्या कहना है? यही तो है फाहुन, हमारे साथियों।

अब इस पल में मैं आपसे क्या कहूँ, वो रूठ गए मेरे अंदाज देखकर, वो रूठ गए मेरे अंदाज जो जाकर देखकर बदल गए, मेरे जज्बात देखकर हजारों टुकड़ों किए उन्होंने मेरे दिल की, और खुद ही रो पड़े हर टुकड़े, हर टुकड़े पे अपना ही नाम देखकर। दोस्तों,

बहुत उदास है कोई तेरे चुप हो जाने से, हो सके तो बात कर, हाँ हो सके तो बात कर किसी बहाने से। तू लाख खफा ही सही मगर इतना तो देख, कोई टूट गया है तो कोई टूट गया है, तेरे रूठ जाने से ना।

याद रखता है। आज किसी का वक्त बुरा है तो उस पर हंसो मत, ये वक्त सबके चेहरे याद रखता है।

इसीलिए तो कहता हूँ कि सूरज से कहो रोशनी देना छोड़ दे, सितारे से कहो टिमटिमाना छोड़ दे। अगर तुम नहीं आ सकते तो अपनी यादों से कहो हमें सताना छोड़ दे। साथियों, ये फाहुन के प्रोग्राम जो आप सुन रहे हो, ख्याल जब उन्हें मेरा आया होगा, मेरी याद ने उनको सताया होगा, भूल न पाए जिन्हें हम आज तक, हाँ भूल न पाए जिन्हें हम आज तक, कैसे उन्होंने हमें भुलाया होगा।

दुनिया में हम खोते गए, होश में थे फिर भी मदहोश होते गए। जाने क्या जादू था उस अजनबी चेहरे में, खुद को बहुत रोका फिर भी उसी की होते गए।

0: वाह रे वाह,
1: बदले बदले से लगते हो। हाँ हाँ, बदले बदले से लगते हो, क्या बात हो गई? शिकायत मुझसे है या किसी और से मुलाकात?

कलाकार तो अपनी अपनी जगह होते न, आप ही से कहता हूँ कि तुझको अपनी रूह में उतार लूँ मैं, खुद को तेरी चाहत में सवार लूँ मैं। नहीं चाहिए मुझे इस दुनिया में और सा कुछ और चीज, बस एक तू मिल जाए, एक तू मिल जाए तो अपनी जिंदगी गुजार लूँ मैं साथियों।

0: साथियों, नसीब के खेल भी अजीब होते हैं ना। सच्चे दिल वालों को आंसू ही नसीब होते हैं। कौन चाहता है अपनों से दूर होना, पर अक्सर छूट जाना है, टूट जाते हैं। और जो करीब होते हैं हमारे प्रिय और दोस्तों, हमारे मित्रों, फाहुन
1: ये बता दे तुझे
0: हिंदुस्तानी रेडियो पे जहाँ पर आप चून हो, परमाश्री मोहम्मद रफी साहेब, शमशाद बेगम, इन दोनों की आवाजों में यू वेल, यही कहता हूं मैं ऑन स्टार फ्लक है।

यूं ही कह दूं आपसे कि हंसते दिलों में गम भी है अजनबी जी, मुस्कुराती आंखें कभी नम भी है। दुआ करते हैं आपकी खुशी कभी ना रुके, क्योंकि आपकी हंसी के दीवाने हम भी है। यूं ही और इशारे वो इशारों में कह देते हैं

पाहुन आपके साथ कभी नहीं छोड़ता है। दिल रोया पर आंखों को रोने न दिया, सारी सारी रात जागे खुद को सोने न दिया। इतना करता है याद आपको, इतना करते हैं याद आपको, पर इस बात का एहसास आपको होने न दिया। यूं ही आपसे कहता हूं और आपको याद दिलाते हुए ये सुना दूं।

जब आशिक के बात होता है तो दिल डरता है, खौफ है, ये इस बात से हमारी साथी हूँ, क्योंकि एक कुछ उलझा सवालों से डरता है दिल, ना जाने क्यों तन्हाई में बिखरता है दिल। किसी को पाना कोई बड़ी बात नहीं होता है, पर किसी को खोने से डरता है दिल। यूं क्यों ये बात है, क्योंकि अकेले तो आए, अकेले जाना, अकेले जीना है, क्यों डरता है।

गाली देने की हिम्मत आती है भाई। आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है,

0: luistert naar Hindustani Radio. Radio Faham.
1: Digitaal radio. Internet van FM.nl.
2: तो हमारे साथ ही जैसे मैंने आपसे बताया खास करके प्रोग्राम आप जो सुन रहे हो इसमें संगीत जो पेश कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ किसी से जरा से बात हो जाए काफी दिनों के बाद। भैया कांति कुमार
3: बोलो भैया,
2: कैसे आप हो? ठीक है ना, बहुत दिन बाद आपसे फिर मुलाकात भेंट भइल। आज इस पल जो है एक मैंने हार्दिक बुलाई कि आपसे कुछ बातचीत हो रहा है, और जो है अब इन दिनों इंटरनेट के जरिए से रेडियो सुन सकते हो आप ओवरऑल और सुनते हो। थैंक यू दैट यू बेल्ट। अब और कुछ बताओ, अब हम सुनी हाँ इंटरनेट पे खोजिए तू तो पाइए इंटरनेट पे फाहन FM.nl हाँ तो ऊपर मिली छ
3: हम खोजो है लाभ दे
2: और आप तार के लिए बहुत आपको डंक वेल हृदय से धन्यवाद, तहदिल से शुक्रिया भैया। और कांति कुमार जी न लंग तैत हो रही किस्त मन
3: जाने आप तू तो बोल रहे थे बोला किन किन तरह फोन चलो चलो फोन आ किन्हीं भी इंटरनेट में बोलो कि
2: या het komt goed. Vier, dank u wel. Ik wens u gezegende mooie dag. Je bent aan het komen. Ik
3: ben welkom.
2: Atje, alsjeblieft. Atje. Ja, goed, gaat u goed. Je hebt allemaal bij je kant. Kom maar, die hebben we zaten. En kutspel, onze baat, dit hoe.

जो भी कहो पैगाम ने प्रोग्राम वाहन की मैं आपके साथ शाम पूरन आपके साथ जो दे रहा हूँ सोचते हुए प्रोग्राम आपको पसंद

जब के बादशाहों के बादशाह सात सुरों के बादशाह परमार से मोहम्मद रफ़ी के आवाज़ में ये नंबर को आप सुने, जबकि मुझे बेहद खुशी हुआ और मैंने और एहसास हुआ कि पता चला कि हमारी अजनबी जी प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो मेरे तरफ से आपको और यूँ ही अजनबी जी एक सेहंद मोदा कहते हैं आपके साथ भी देने के लिए, हौसला देने के लिए तह दिल से शुक्रिया कहता हूँ। अजनबी जी अगर वक्त मिले समय मिले तो अगर आकर आप एक दो शेर शायरी शेर कह देते लोगों की जो है आपकी फैंस जो है हमेशा वो इंतज़ार भी करते रहते हैं ना।

सच है कलाकार मुकेश जी। हाँ साथियों, मुकेश जी

जिंदगी को तन्हा वीराने में रहने दो, या ये वफा की बातें ख्यालों में रहने दो। हकीकत में आजमाने से टूट जाते हैं दिल अक्सर साथियों, और ये इश्क दोस्ती और मोहब्बत उसे किताबों में रहने दो ना।

ढूंढ ही लिए हो तो चलना ही पड़ेगा ना, प्यार मोहब्बत में यही तो होता है, इश्क जो हो जाता है तो क्या मैं कहूँ भैया। सिंपल जी भी प्रोग्राम सुने भाई, सिंपल आपको और हृदय से धन्यवाद। आंसू आ जाता है रोने से पहले, प्यार मोहब्बत करो ना, आंसू आ जाता है रोने से पहले, ख्वाब टूट जाता है सोने से पहले। लोग कहते हैं लोग कहते हैं, आजमाए आप नहीं, लोग कहते हैं मोहब्बत गुनाह है। ये कैसे हो सकता है दोस्तों, काश कोई रोक लेता इस होने से पहले। हाँ, अगर कोई रोक लेता इसे होने से पहले हमारे साथियों, तो मोहब्बत दुनिया से कहाँ होता था, दुनिया कहाँ से कहाँ चला जाता। फिर भी यही तो, इसीलिए तो मोहब्बत होता है, प्यार होता है, इश्क होता है, और ये प्रकृति के मूढ़ नतीर के ये परम और मूढ़ नतीर के कार्य है। अपना कार्य मूढ़ नतीर तो करता है, वैसे नित्य वही मैं ऐसे सही नहीं आपको वार से दाती है व्यस्त हमारी साथियों दोस्तों, और जो है ये प्रकृति अपना वो नेम है ना, और परंपरा ट्रेडिशन रहो जो करना है वो तो होता ही रहेगा, और जो आप सीखे हो शुरुआत से जब से पैदा हुआ माँ पिता, जहाँ से प्रथम ये कहते हैं प्रथम गुरु वो माँ पिता, वो माँ होता है ना, फिर भी जाकर जो सीखते जिंदगी में काम में लाओ, और ये कभी कभी सुनते रहना

यहाँ पर प्यार जो है, शब्दों में कहता हूँ कि प्यार तुझसे है बे इंतहा, एक पल के लिए भी तुझसे नहीं खोना है। हाँ, एक पल के लिए भी तुझे नहीं खोना है, इतना जरूरी तो मेरे लिए जीना भी नहीं जितना जरूरी है सिर्फ तेरा होना है। ये शब्दों में ये एहसास दिलाना है, आपको बतलाना है कि प्यार है, कितना प्यार है, लेकिन जब तक एहसास नहीं तो प्यार नहीं है।

आप जो हौसला देते हो हृदय से धन्यवाद तार करने के लिए भी। आज के प्रोग्राम में हमारे भैया सिंपल भी एक साथ दे रहे हैं। नाम उनकी अजीब है ना, फिर भी नाम में क्या रखा है हमारे साथियों। और प्यार मोहब्बत जो होते हैं उसमें कहता रहता हूँ तेरा चेहरा आज भी मासूम है, आज भी हाँ मेरे चाहत में वही सुकून है। तेरे चेहरे पे एक मुस्कान के लिए जान भी वार दे, ऐसा मेरे प्यार का जुनून है। हमारे दोस्तों यही है फाहुन की पहचान, आप ही के हिट सेशन द म्यूजिक सेशन, और अभी मैं आपका सेवक श्याम पूरन आपके साथ जो दे रहा हूँ

0: कहते हैं लोग समय वक्त बदलता है, नहीं, उसी तरह से दिन रात, उसी तरह से और सूरज चांद है साथियों। और जैसे सूरज उन दिनों निकलता था आज भी निकलता है, उसी तरह से उनकी जो है और जाकर ढलते हैं ना। तो प्यार के बाद जब होता है तो ये सदियों से जब से सृष्टि बना है, प्यार नहीं होता तो सृष्टि में आज इंसान भी कहाँ होते, सब कुछ वस्तु जो है। और आज का दिन जो है चला गया है आज तरक्की लेते करते करते, जहाँ व्हाट्सएप इंटरनेट, आप जानते हो क्या मैं आज के बारे में कुछ कहूँ आपको, तो यूं ही आपसे कहता हूँ बस एक बार, व्हाट्सएप के भैया सिंपल प्रोग्राम सुनते भैया नारायण डंक वेल, हर एक कोई जो हौसला देते हैं फ़ोन करते हैं, ये लाइव आपके लिए कार्यक्रम प्रस्तुत हो रहा है साथियों, बस एक बार करके एतबार लिख दो व्हाट्सएप पे ना, बस एक बार करके एतबार लिख दो, कितना है मुझसे प्यार लिख दो ना, कत्ती नहीं अब ये जिंदगी बिन तेरे, और कितना करूं इंतजार ये व्हाट्सएप पे, और बयान कर दो
1: प्यार।

जबकि एहसास के बात होते हैं ना, तो ना जाने ये कैसी मोहब्बत है तुझसे, बात नहीं होती फिर भी दिल को फिकर बस तेरी है, यही तो कहते हैं। प्रणाम श्री मोहम्मद रफी साहब, सुमन कल्याणपुर, मधुर संगीत।

कलाकारों का तारीफ करते रहते हैं दोस्तों और कहते हैं, यही एहसास दिलाने के शब्दों है ना, कि मेरी किस्मत में ना सही पर मेरे इस दिल में तो हमेशा तुम ही रहोगे। ये लोग भी कहते हैं एहसास दिलाने को, शब्दों तो शब्द होते हैं ना।

कहते हैं याद उसे करो जो अच्छा हो, प्यार उसे करो जो सच्चा हो, साथ उसका दो जो इरादे का पक्का हो, और दिल उसको दो जो सूरज से नहीं दिल से अच्छा हो।

सर अपना ये प्यार मोहब्बत रहने दो कश्ती को सफा।

ये जो है बादशाहों के बादशाह साथ तो शुरू पदमा श्री मोहम्मद रफी साहब की आवाज़ में और आप ये श्रवण के हमारे साथियों और ये हमने चलाया यूं ही पसंद है ये हमारी कुलेखा जो है सहयोगी बीबी साहिबा रहीम बख्स उन्हीं के नाम से। मैं यूं ही अपना ही बात कहता हूँ, बातचीत होता ही रहता है, प्रोग्राम आपके नाम चलाते हैं, अपनी इज्जत को कुछ इस तरह से बचा लिया, कभी आंखें दिखा दी और कभी सर झुका लिया, आपसे नाराजगी को कभी लम्हे चलने ही ना दिया, कभी वो हुआ और कभी वो हंस पड़े और कभी हम मुस्कुरा दिया। रूठ कर बैठे रहने से बड़ा रूठ कर बैठे रहने से भला घर कहाँ चलेता है ना। कभी उन्हें खुद को अपनी गुदगुदा दिया और कभी मैंने मना लिया खाने पीने की कमी कभी होने न दिया। हाँ, खाने पीने का कमी कभी होने न दिया, कभी गरम खा लिया तो कभी बासी से काम चला लिया। मियाँ हुआ बीबी, पति हो या पत्नी न, मियाँ बीबी दोनों एक बराबर है। कभी खुद राबा बन गया ना, हाँ कभी खुद राजा बन गया और कभी उन्हें बॉस बना दिया। तो यही वातर वैद वैंदुन आल टेट।

करते रहे ना, तू वही तो है ना, तू वही है ना जिसने पहले पागल किया, फिर पागल कहा और फिर पागल समझकर, हाँ समझकर। छोड़ गया।

यह हमारे साथियों समझे ना, जो बात दिल में है उसे बोलने की और हिम्मत रखो, और जो बात किसी के दिल में है उसे समझने की समझ रखना चाहिए ना, रखो।

कैसा लगा जो भी आप बतला सकते हैं। जिंदगी नहीं रुलाती है हमारे साथियों, जिंदगी नहीं रुलाती है, रुलाती वो लोग हैं जिन्हें हम, हाँ जिन्हें हम जिंदगी समझ लेते हैं ना।

अब हमारे साथियों और यही चून है आप ही पर और आप ही स्टेशन जनता के आवाज हिट स्टेशन द म्यूजिक स्टेशन पाहुन हिंदुस्तानी रेडियो।

ये कमाल हमारी भाई देवेंद्र सिंह की आप जो सुने अमर साथियों, और ढोल मास्टर की का कहना है तेरी मोहब्बत की हिफाजत कुछ इस तरह से हमने की। जब देखा किसी ने प्यार से, हाँ, जब देखा किसी ने

आफ्टरवाज फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के प्रोग्राम में, और इसमें से जो है इस बार मैं आपके नाम चलाने जो वाला हूँ तो है

0: Dobraj prasad aur Savita सविता सिंह हमारी साथियों पाहुन के माध्यम से।
1: कमरा खाली है समय बया बिनो साबी सांदे ब्लू लोशन को पका सही ओह आबरा सही बीमार गोचे को कमरा सही दो पेनी कोना मी निको युरवा कमरा की यू

और ये जो है रमेश चंद्र बिहारी की कमाल। या साथियों, रमेश चंद्र बिहारी

और ये तो प्यार के बात हुआ ना कि पत्थरों से प्यार किया, नादान थे हम, गलती हमसे हुई क्योंकि इंसान थे हम, आज जिन्हें हमसे बात करने में तकलीफ होती है ना, कभी उस शख्स की यकीन मानो जान थे हम।

यही चलू कि आप चुने आप ही कि हिस सेक्शन फाहुन हिंदुस्तानी देख दू सेक्शन पर 24 घंटे लगातार कि इंसान चाहे कितना ही खुश क्यों ना हो, जब वो अकेला होता है तो वो सिर्फ उस इंसान को याद करता है जिसे वो दिल से प्यार करता है। हमारे साथ क्यों हमारे दोस्तों और ये फाहुन रेडियो के प्रोग्राम आप जो सुन रहे हो, कुछ संगीत चलाते हैं हम। और इस बार जो हम आपके लिए संगीत ही चुन रखा हूँ और जो है चलाता चाहता हूँ, अगर आपको

ये जिंदगी है हमारी साथियों, बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया। कसम से जिंदगी ने बहुत हंसाया और बहुत ही रुलाया, पर शिकवा नहीं है जिंदगी से। हाँ, पर शिकवा नहीं है जिंदगी से हमें कोई, क्योंकि इसी ने कुछ हसीन दोस्तों से भी मिलाया और जिंदगी को और जीना भी सिखला दिया।

इसी को हम मधुर संगीत कहते हैं, प्रख्त है हेल मोई वत फिंट यू सेलफन altijd aangeven.

मेलोडी क्वीन लता जी से और ये सुन रहे हो हमारी साथियों भैया राजेश बदलू से मैं ये सवाल कर रहा हूँ, मांगी थी मौत तो जिंदगी मिल गई, भैया राजेश मांगी थी मौत तो जिंदगी मिल गई, अंधेरे में भी मुझे रोशनी मिल गई, पूछा खुदा से नसीब में क्या है मेरे भैया राजेश, तो सबसे हसीन तोहफा आपकी दोस्ती जो है हमारी दोस्त मिल गया।

आप जानना चाहोगे इस फिल्म की स्टार कास्ट जो था हमारे साथियों, शाम गम की कसम, फिल्म का नाम फुटपाथ, तलत महमूद, दिलीप कुमार, मीना कुमारी इस फिल्म में काम किए।

अब तू मेरे फिक्र ना कर, मेरी खैरियत की अब तू फिक्र ना कर। छोड़ देता ना मुझे, छोड़ देता ना मुझे मेरे हाल पर। तू दर्द कर मेरे हमदर्द बनने की कोशिश ना कर। दिल यही कहता है, आपसे कह दूं आओ ये कार्यक्रम में।

वाह वाह हमारी भैया रजेश बदलू, मधुर संगीत और सीखा हूँ आपके माता श्री के जरिए से, और ये शब्द जो मैं यहाँ पर और आज अपने साथ ये प्रोग्राम में आपके साथ मिलकर और कह रहा हूँ, बतला रहा हूँ। शब्दों की दुनिया अजीब लगती है, झूठी सही पर हर खुशी नसीब होती है। बेशक आते हैं सपने कुछ पल के लिए, पर इन पलों में जन्नत कितनी करीब होती है, ऐसा ही एहसास भी होता है ना यूं ही। और चल के सुनते हैं वही शख्स, ये कलाकार जो है

प्रोग्राम में ये जो है गजल आप श्रवण किए। मुस्कुराना ही खुशी नहीं होती, उम्र बिताना ही जिंदगी नहीं होती, खुद से भी ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है दोस्तों का। ना भैया रेस बदलू, क्योंकि दोस्त कहना ही दोस्ती नहीं होती। हमारी साथियों, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो

इस सिफारिश से ना हुई, उनकी मुस्कान की फरमाइश ना हुई, जिसे देखने को तरसती थी आंखें, उन्हें हमसे मिलने की या उसे हमें हमसे मिलने सी ख्वाहिश ना हुई।

हमारी साथियों जो है वो खुद को फूल और हमको पत्थर कहकर मुस्कराया करते हैं। उनको क्या खबर, पत्थर तो पत्थर रहता है, फूल ही मुरझाया करते हैं हमारे साथियों। और ये मैं आपसे कह दूं और ये बात जो है आप ही से कहते हैं, क्योंकि

करो जो मिलेगा नसीब किस्मत तकदीर, कहना मेरा यही है कि कितना अधूरा लगता है जब बादल हो और बारिश ना हो, जब जिंदगी हो और प्यार ना हो, जब आंखें हो और ख्वाब ना हो, और जब कोई अपना हो, जब कोई अपना हो और पास ना हो। हमारी बेस्ट और मेजन प्रोग्राम पाहुन के आप सुन रहे हो।

हमारी और बेस्ट सुनने वालों, देखा पलट कर उसने, चाहत उसे भी थी, देखा पलट कर उसने, चाहत उसे भी थी, दुनिया से मेरी तरह शिकायत उसे भी थी, वो रोए थे मुझको परेशान देखकर, उस दिन पता चला मेरी जरूरत उसे भी थी।

है मुकद्दर, मोहब्बत जो है मुकद्दर है, कोई ख्वाब नहीं। ये वो अदा है जिसमें कोई कामयाबी नहीं। जिन्हें पनाह मिली, जिन्हें पनाह मिली उन्हें उंगलियों में गिन लो, और जो बर्बाद हुए, जो बर्बाद हुए है उनका कोई हिसाब ही नहीं। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के प्रोग्राम।

राहुल के प्रोग्राम आप जो सुन रहे हो, और जब मैं अपना बात करता हूं तो मुझको पता नहीं आज मैं क्या लिखूं, तुझको लिखूं या तेरा साथ लिखूं, तेरा साथ बीता हर एहसास लिखूं या तुझसे जुदा एहसास लिखूं, मेरा दिल करता है बस तेरा नाम लिखूं। ठीक है, बतलाइए, क्योंकि यही तो फाहुन और मुझको और ये एहसास दिलाता है।

एक जाना पहचाना सा चेहरा है जो ख्यालों में आके ठहरा है। मान आजकल हकीकत से काफी दूर है वो। हाँ हाँ आजकल हकीकत से काफी दूर है वो, पर अब यादों में उसका बसेरा है। कहता हूं मैं और जो है चुन है आप ही किस स्टेशन पर जनता के आवाज वाहन हिंदुस्तानी रेडियो पर।

ये जिंदगी है यारो हमारी दोस्तों, ये एक बात है, जिंदगी जो हमारी है हम जी रहे हैं, आप इसे सबक हम लेते हैं और जानते हैं आप भी। और गिरना उठना जिंदगी जो है, गिरना इसे देखा जाए तो, और ये एक सबक है आपको मिले। आप गिरे थे खास करके उठना जरूर है, फिर एक दिन लड़ना झगड़ना और जो कार्य आप करते हो, एक हमारी अब जिंदगी में जो है खास करके आदत है, आदत जो है बुरा अच्छा आदत जो आदत है उसे पकड़ते रहो दोनों दोस्तों, ये करैक्टर कहते हैं ना, और जो है गिरना उठता वो एक्सपायरिंग है, नहीं तो फेफन ये जिंदगी में चलना और एक नदिया तरह बहते चलो दोस्तों, कभी रुकना नहीं, यही खास करके आप जिंदगी, इसी को जिंदगी कहते हैं। यूं ही मैं आपसे ये बतलाता चलता हूँ, ज़रूरी नहीं कि मोहब्बत में रोज बातें हो दोस्तों, ये प्यार मोहब्बत जो होते हैं आपस में तो लोग हर एक पल एक दूसरे को और अपने पास चाहते हैं, लेकिन वो बात ऐसा नहीं है, अकेले जिंदगी है, अकेले आए अकेले जीना, अकेले आना अकेले जाना है, जरूरी नहीं कि मोहब्बत में रोज बातें हों, खामोशी से एक दूसरे को देखना भी इश्क है दोस्तों, इसे आप एहसास करना और एहसास करते रहो, जिंदगी जीते चलो, खुशियां आपस में बांटते चलो,

और सो सिंपल इसे दोस्तों, अति सो सिंपल, प्यार के लिए दिल, दिल के लिए तुम, तुम्हारे लिए हम, और हमारे लिए तो तुम ही तो हो ना। मेरी पसंद हमेशा लाजवाब होती है, मेरी पसंद हमेशा लाजवाब होती है, यकीन न आए

मित्रो हमारी दोस्तों बेस्ट लोइस राफ

तो हमारे दोस्तों फाहन हिंदुस्तानी रेडियो पे जहाँ पर आप चुन हैं और कोई भी कार्य है करवाना है रेडियो के माध्यम से तो अवश्य ये मुमकिन है। दमोह खड़ खेत धातु बस्तातर बल दमोह खड़े

Ik moet niet, beste luisteraars, en niks moet hoor, echt waar. U mag dan inbellen, hoor, daar kunnen we nu 73-62-20-77. Is de Harry Hua, Zeruri Gabri Hua, voor mij ze. जो भी कार्य हो दोस्तों यहीं पर तौर तरीके से हम कोशिश करते हैं आपके लिए करने के लिए।

फाउंटेन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाउंटेन के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फेटा फाउंटेन हिंदुस्तानी रेडियो।

मैं आपका सेवक श्याम पूरन अभी हूँ, आपके साथ यही सोच रहा हूँ जिन विचारधारा से दिन अंदाज में ये प्रोग्राम हम आपके लिए, मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ, आपको पसंद आता हुआ होगा। कोई गलतियाँ हो जाए ये जानते रहना, माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, इंसान हूँ ना, और भगवान जो है उनसे कोई गलती नहीं होता है। भगवान से जो मांगना है मांगो, दिल खोल कर मांगो, वो आपको देगा। उनकी भंडार भरा हुआ है हमारे साथियों, जानते रहना। यूं ही आपको याद दिलाते हुए

साथियों, हमारे दोस्तों, हमारे मित्रों, फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो जहां पर आप ट्यून हैं, चली रे मुहा चिकनी

वाह रे वाह, शाबाश शाबाश शाबाश, सितारों से भरी हुई रातें पसंद है, दूर से सुनी उसकी बातें पसंद है, तारीफ के काबिल है उसकी बाल भी, पर्त पर्त नार मुझे मुझे ज्यादा उनकी आंखें जो है जाकर पसंद है हमारे साथियों।

साथियों, ये मोहब्बत है ना, मोहब्बत में कभी कभी वादे टूट जाते हैं, इश्क के कच्चे धागे टूट जाते हैं। कभी ना कभी तो झूठ बोलता होगा चांद भी, शायद शायद या मिस्किन शायद, इसलिए रूठकर तारे भी टूट जाते हैं ना।

विनती करो, जहां तक किस्मत तकदीर में जो लिखा होता है वही तो मिलता है ना।

बनते बनते कितने भी टूट जाते हैं, लोग मिल जाते हैं एक कहानी बनकर, दिल में बस जाते हैं निशानी बनकर, जिन्हें हम रखना चाहते हैं अपनी आंखों में, क्यों निकल जाते हैं वो साथियों, वो पानी बनकर, आंसू बनकर निकल जाते हैं।

सुरेन भगवान इनके कमाल हमारे साथियों कुलेखा सुरेन भगवान दिन यहां बेस्ट से उनके प्रोग्राम यहां पर आप सुन सकते हो।

या भैया सुरेन भगवान दिन आपका नाम स्पेशल आप ही के गुजारिश पर रात के कार्यक्रम में

0: या या सुनने वाले हो भैया, बीरबल का प्यार ले लो,
1: ले लो ले लो भाई बीरबल का प्यार।
0: सुरेन भगवान दिन टूट गया दिल, अरमान वही है सुरेन, टूट गया दिल अरमान वही है, दूर रहते हैं फिर भी प्यार वही है, जानते हैं कि मिल नहीं पाएंगे फिर भी इन आंखों में, इन आंखों में, हाँ साथियों इन आंखों में जो है प्यार वही है।

वाह वाह वाह वाह कलाकार। हिट स्टेशन फाहुन।

यूं ही जरा से मैं आपसे ये बता दूं कि माना कि तुमको प्यार नहीं नफरत ही जताने चले आओ, सदियों से जागी आंखों को एक बार सुलाने आ जाओ ना। जिस मोड़ पे हमको छोड़ गए हम बैठे हैं, हम बैठे अब तक सोच रहे हैं क्या भूल हुई, क्यों जुदा हुए, बस ये समझाने चले आओ। और पावन हिंदुस्तानी रेडियो पे जहाँ पर आप चुन हो, पावन हिंदुस्तानी रेडियो हमारी बेस्ट मेंशन। और

और बीबी साहिबा जो फौसिया जी है दुबई में प्रोग्राम सुन रहे, फौसी हृदय से धन्यवाद, तहजील से शुक्रिया आपको साथ देने को। हाँ, साथ देने के लिए तहजील से शुक्रिया फौसिया जी।

तो ये फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है, आप हो तो ये बेहद खुशी की बात है क्योंकि आप जो साथ दे रहे हो हमारी दोस्तों। मोहम्मद रफी साहेब बादशाहों के बादशाह, साथ तो शुरू के बादशाह, द मेलोडी क्वीन लता मंगेशकर जी।

करते रहो इंतजार, जो नहीं आता उसका इंतजार ना, इतना इंतजार क्यों, किसी के लिए अपना यह हाल क्यों। वैसे तो इस दुनिया में बहुत सी चीज प्यारी है, पर जो नहीं मिलता उसी से इतना इतना इतना प्यार क्यों।

फन हंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेते होने के लिए तार कीजिए 9735 तक सेफ नफेटा फाहून हिंदुस्तानी रा

आप एक स्टेशन द म्यूजिक स्टेशन फाहोन एफएम और मैं खास करके जो है श्याम पूरन आपके साथ दे रहा हूँ इस कार्यक्रम में।

ये महफिल ना सही तन्हाई तो मिलती है ना। महफिल ना सही तन्हाई तो मिलती है, मिलन ना सही जुदाई तो मिलती है। कौन कहता है कि प्यार में कुछ नहीं मिलता दोस्तों, कौन कहता है ये बात कि प्यार में कुछ नहीं मिलता। वफा ना सही बेवफाई तो मिलती है ना, क्या मिला है आपको, यूं ही आपसे बतला और देता हूँ, और आप बतलाना चाहते हो कुछ तो यूं ही बतलाइए। और जो इस बार आपके लिए यहाँ से एक शेर शायरी के साथ जो मैंने यहाँ प्रोग्राम में और साथ दे रहा हूँ आपके, तो उसका मतलब एक गज़ल आपके लिए प्रस्तुत करेंगे, चलाएंगे और साथ मिलके सुनते हैं ये खास गजल आप ही के नाम। अजनबी जी प्रोग्राम सुन रहे हैं, अजनबी जी एक गजल है आपको बेहद पसंद है, फिर भी

और इसी को कहते हैं फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो टेलीफोन 0 3 2 6 20 77. और स्पेशल आप ही के नाम ने

दोस्तों बतियाइए आप, हम कभी नहीं चाहते ऐसा कुछ आपके साथ भी हो। टून रहा करो पाहुन पर।

बनाते हो लोग यही सोच कर खुशियाँ मिलेगा ना। और नसीब बताता है, किस्मत बताता है, मुकद्दर बताता है, तो मिल जाए जो वही सही और वही लेना ही पड़ता है। और इसमें जो होता है गीत गजलें और प्रस्तुत होता है आपके नाम। जब ऐसा होता है जिंदगी में ना, ये प्यार मोहब्बत में होता ही रहता है, याद जब भी उसकी आती है, जहाँ पे जुदाई हुआ है ना, याद जब भी उसकी आती है तो रातों में, हाँ तो रातों की नींद उड़ जाती है। मेरे दिल का हाल ना पूछो, मेरे दिल का हाल ना पूछो प्यारे आशिक। हाँ आशिकी ऐसी होती है, जिसके साथ ही बीता वही जानता है। ये प्यारी आशिकी ऐसी होती है, तेरे खोने का गम है मुझको, तेरी याद बहुत सताती है। याद जब भी उसकी आती है, तूने धोखा दिया, तूने धोखा दिया, ये वफाई और बेवफा तेरी यादें। बेवफाई के बात है इसमें, होता है जब किसी पे जुदाई हो जाता है तो वहाँ बेवफा एक दूसरे को दोख देते हैं ना, ये बेवफाई तेरी यादें। मुझे रुलाती है तेरी इश्क में पागल था मैं, तेरी यादें मुझे तड़पाती है। याद जब भी उसकी आती है, याद जब उसकी याद आती है तुमको, तुम तो कहते थे कि उम्र भर मैं साथ हूँ, फिर ये कैसी जुदाई है यही पूछ रहा हूँ मैं आपसे। तुम तो कहते थे कि उम्र भर मैं साथ हूँ, फिर ये कैसी जुदाई है। धोखा दिया तूने हमको, क्या यही आशिक कहलाती है। सोच रहा हूँ मैं अपने बारे में। और जब याद भी उसकी याद आती है, रातों की नींद उड़ जाती है। ये गीत गजलों के साथ, ये शेर शायरी

0: ऐसी थी हमारे सामने एक शक्ल चांद जैसी थी, तुम्हें ये कैसे बताएं वो रात कैसी थी। महक रहे हैं मेरे होंठ उसकी खुशबू से, अजीब आग थी बिल्कुल गुलाब जैसी थी।
1: सो

हाँ तो हमारे प्रिय और सुनने वालों, गीत गजल चल रहा है और गीत गजल जब चल रहा है तो यूं ही और शेरशाही होना ही चाहिए ना, साथ दे रहे हो खुशी की बात है। अपनी प्यारी आंखों में छुपा लो मुझको, मोहब्बत तुमसे है चुरा लो मुझको, धूप हो या चेहरा तेरा साथ चलेंगे हम, यकीन ना हो तो आजमा लो मुझको, तेरे हर दुख को सह लेंगे हंस कर हम। हाँ कहते हैं शब्दों में, तेरे हर दुख को सह लेंगे हंस कर हम, अपने वजूद की चादर बना लो हमको। हाँ अपनी वजूद की चादर बना लो मुझको, जिंदगी भी तेरे नाम कर दी मैंने, जिंदगी जो है भी तेरे नाम कर दी मैंने, बस चंद लम्हे सीने से लगा लो मुझको, यही ख्वाहिश है। और ख्वाहिश जो है पूरा अगर आप करना चाहे तो करो, गीत गजल के साथ शेर शायरी गुलाब के फूल की तरह खुशबू उसमें है ना।

वाह वाह, यूं ही क्या कहना है, कलाकार है ना, जो जो दोस्त समझते हो तो दोस्ती निभाते रहना, हमें भी याद करना, खुद भी याद आते रहना। मेरी तो खुशी दोस्तों से है, हाँ मेरी तो खुशी दोस्तों से है, मैं खुश हूँ या नहीं। तुम मुस्कराते रहना दोस्त, और दोस्त किसे कहते हैं, दोस्तों वही जो साथ निभाते हैं और कब कस कितने पल तक। दोस्त किसको कहते हैं,

और बनवारी लाल मूवी का नाम ही मेरे यारो। और आज आपको हम कुछ पुराने गीतों की बाहर सॉन्ग सुनाएंगे हम। और अगले अगले अगले गीत के ओर जाते हैं और वो क्या है शमी कपूर आज बनवा श्री मोहम्मद रफी का गया हुआ ये सॉन्ग है।

0: और एक प्यारी का नगमा है और मजों की और कहानी है। फलंतैन यानी कि लवली सॉन्ग हम चलाते हैं।
1: झूठा ही सही
0: और झूठा ही सही
1: के लिए कोई हमें प्यार कर ले। झूठा ही
0: सच्चे कहना।

और दोस्तों आपको हम और वैलेंटाइन के कुछ और कुछ प्यार भरी गीत से आज आप लोग को हम सेवा करते हैं। ओनली फॉर द लवर वैलेंटाइन सॉन्ग।

और दोस्तों दफली वाले की और बांध हम चलते हैं और यानी कि लवली सॉन्ग के बाद। और आज भी हम आप लोग को करीब एक घंटा कुछ हिट सॉन्ग सुनाएंगे और वो कौन सा सॉन्ग होगा, कुछ मोहम्मद रफी का परमा श्री मोहम्मद रफी का हॉट सॉन्ग और कुछ माइती मुकेश का सॉन्ग आपको हम आज सुनाएंगे। आओ बढ़ा जाए सबसे पहला सॉन्ग की ओर हम चलते हैं और वो है माइती मुकेश का, ये सॉन्ग है, फिल्म के नाम है पूरब और पश्चिम।

कोई जब हमारा कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। और ये फिल्म का नाम है पूरब और पश्चिम, जिसमें मनोज कुमार ने काम किया है। कितने लोग इस फिल्म को देखकर बहुत प्रसन्न किया है। और फिल्म पूरब और पश्चिम में जिसने माइती मुकेश ने काम किया है दोस्तों। और अगला गीत की ओर हम जाते हैं, वो है परमा श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ सॉन्ग है प्यार का सागर, जिसमें मीना कुमारी राजेंद्र कुमार ने काम किया है। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाली कौन है, आओ सुना जाए।

और मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले कौन है आपको तो पता है। आज कुछ पद्माश्री मोहम्मद रफी का गाना और नैति मुकेश के गीत से आपको हम सेवा करेंगे हमारे दोस्तों। और दोस्तों जैसे आपको पता है हम चलते हैं फिर से एक फिल्म के नाम है मिलन, जिसमें नैति मुकेश ने इस सॉन्ग को गाया है। नहीं खती जीवन शस्त्र का ये गीत है, मैं तो दीवाना दीवाना और दीवाना लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का, और ये सॉन्ग है

और आपको आंचम दोस्तों पद्माश्री मोहम्मद रफी का गीत और यानी कि माइती मुकेश का गीत आज हम आप लोग को सुनाएंगे। तो एक माइती मुकेश का, तो अब हम जाते हैं पद्माश्री मोहम्मद रफी का और मूवी का नाम है घराना निहते हो नशस्त का गीत है, जिसमें पद्माश्री मोहम्मद रफी आशा जी ने और इस गीत को बहुत खूबी से गाया है। इस एन हिट सॉन्ग जिसमें राजेंद्र कुमार आशा परीख ने काम किया है, आओ सुना जाए।

और जब से तुम्हें हमने देखा है, अगर ये आपको हमने जब से देखा है तो सिर्फ आंखों में कौन है, तुम ही तुम हो। तो दोस्तों आगे तो अगला गीत की ओर हम बढ़ते हैं, तो हम तरुण जाते हैं ओल्ड इन गोल्ड जोंग, और है मज मुकेश ए नाइटिगेल लता मंगेशकर का ये जोंग है। फिल्म के नाम है हम तो तेरे आशिक है, हम तो तेरे आशिक है। और देखो क्या गाया है।

Een movieke naam, he, dosto. Vers 1967 agit. Ban ma jani ki, mainti mukis, au naiti gil. Lataji ka song, he. Ham to tere aashik he. Song ka naam, he, dosto. Aur aap jante he, aaj hum aapko khushi karenge. Aur wo he, dal mensedi. Fan, liter van mainti mukis en Mohammed Rafi. Parmaat Shri Mohammed Rafi ko geet ko pasand karte. Aap sab ke liye, aaj aapko hum moka deti he. Ki ye dono ko geet aap suniye. To hum chalte he, ab. बारी है अब की बारी है परमा श्री मोहम्मद रफी और आशा जी भी साथ में है मूवी का नाम है

देख के और दीवाना हुआ बादल। परमा श्री मोहम्मद रफी आशा भोसले का ये गीत है, मूवी के नाम है कश्मीरी, कश्मीर की कली दोस्तों, जिसमें शमी कपूर और शर्मिला टैगोर ने काम किया है हमारे दोस्तों। उसके बाद तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर, वो भी है, वो है मधु मुकेश का, ये सॉन्ग है और इस फिल्म में मनोज कुमार ने काम किया है। फिल्म के नाम है हिमालय की गोद में, माला सिन्हा और मनोज कुमार ने काम किया है। मधु मुकेश का एक टॉप सॉन्ग यहां से हम चलाते हैं।

और मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर रहे। ख्वाब से कहाँ प्यार करते हैं लोग, ख्वाब में रोक सिर्फ ख्वाबों में गुम रहते हैं। तो मुकेश की बात में और हम चलते हैं परमा श्री मोहम्मद रफी की और हम जाते हैं दोस्तों। और आशा जी इस गीत में काम किया, ओल्ड इज गोल्ड क्लासिक सॉन्ग। और ये मेरे हाथ में तेरे हाथ, जिस फिल्म में शर्मिला टैगोर ने काम किया है।

और मोहम्मद रफी जी, परमा श्री मोहम्मद रफी जी और आशा जी क्या करते हैं? वाह वाह वाह। तो अगला गीत की ओर हम जाते हैं और वो गीत तो होगा मैथिली मुकेश का, ये सॉन्ग है हमारे यारो। और ये गीत जो है ये फिल्म के नाम है हरियाली और रास्ता निगेटिविन शस्त्र का। ये सॉन्ग जो है एक सुपर हिट सॉन्ग है मुकेश का, मैथिली मुकेश और नाइटिंगेल लता का ये गाया।

एक नहीं ढूंढे ना मिला, तारो गिना एक नहीं मिला। और क्या क्या क्या माइती मुकेश और यानी कि लता जी, नैतिक लता जी आपकी सुनाई हैं हमारे दोस्तों। तो हम आपको सुनाते हैं, फिल्म के नाम है हरियाली और रास्ता। निक रोंड तुए सस्ता का फिल्म है जिसमें मनोज कुमार माला सिन्हा ने काम किया है और यहाँ पे बताए गए हैं मैथी मुकेश एंड नैतिक लता मंगेशकर का सॉन्ग है।

और बोल मेरे तकदीर में क्या है मेरे हम सफर अब तो बता। तो कहते हैं यारो प्यार करना जो है वो सिर्फ नसीब वालों को मिलते हैं कि ना कोई किसी से दूर होता है और ना कोई किसी के करीब होता है, वो खुद ही चल कर आता है जो जिसको नसीब में होता है।

और आपकी आ जाने से बहुत कुछ हो जाता है हमारे यार। तो दोस्तों और आगे गीतों के बाहर प्रोग्राम हमारे चलते हैं कि कभी उदास हो जाओ, कभी उदास हो जाओ तो बताना मुझे, फिर से अपना दिल देने, फिर से अपना दिल देंगे तुम्हें खेलने के लिए। क्या हमारा दिल खिलौना है दोस्तों कि खेलेंगे, और तेरे साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरे हर मुस्कान से मिलने मुझे खुशी है, मुस्कुराता रहना इसी तरह हमेशा, क्यों तेरे ही मुस्कान में मेरी जान बसी है।

और आशा भोसले किशोर कुमार का गाया हुआ सीन है। फिल्म के नाम है ये वादा रहा। कौन कहता है ताजमहल बनाने के लिए, ताजमहल बनाने के लिए दौलत नहीं मिलती, ताजमहल बनाने के लिए दौलत नहीं मिलती, मगर मोहब्बत करने के लिए मुमताज नहीं मिलती। दोस्तों कि कहते हैं नजर चाहती है दीदार करना, दिल चाहता है प्यार करना, क्या बताऊं इस दिल का आलम, नसीब में लिखा है इंतजार ही करना।

और तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई? कभी कभी नजर तो खफा हो जाती है कि मिले तो हजारों लोग थे जिंदगी में, मिले तो हजारों लोग थे जिंदगी में, पर वो सबसे अलग था जो किस्मत में नहीं था। ना रूठो ना रूठना हमसे, हम मर जाएंगे। ना रूठना हमसे, हम मर जाएंगे, दिल के दुनिया तमाम कर जाएंगे। प्यार किया है हमने, कोई मजाक नहीं किया है, दिल के धड़कन तेरे नाम कर दी।

और जरा फिर से, और जरा फिर से कहना, और क्या कहना है हमारे यारो आपको, क्या कहना है, सोच मिलने चाहिए, दिल तो अपने आप ही मिल जाते हैं, तो शक ना कर मेरी जज्बातों पे, तेरे साथ ही जिंदगी मेरी खूबसूरत है, जितने इमायत है पानी की, मरते इंसान के लिए बस उतने ही मुझे तेरी तेरी जरूरत है।

और क्या आप भी कभी भूला है और कभी याद किया है, लेकिन गलती मत करना दोस्तों कि गलती उनकी नहीं, कसूरवार मेरी गरीबी थी। दोस्तों हम अपनी औकात भूल कर बड़े लोगों से दिल लगा बैठी, तो ये बात है कि कभी भूला कभी याद किया। तुम हो सुबह शाम की तरह, तुम हो सुबह शाम की तरह, तुम हो खुशियों की पैगाम की तरह। हमने कब भुलाया है आपको, तुम याद रहते हो मुझे मेरे नाम की तरह। तो किताबों में क्या है,

0: ये पर्दा हटा दो।
1: और दोस्तों ये सब गीतों का महान प्रोग्राम यहाँ से हम चलाते हैं, है ये गीत जो है आपको जरूर सुनना चाहिए।
2: हेलो 9821026212 BPL। अरे 9820026235 Max Touch, check!

व्हाट इज योर मोबाइल नंबर सोनी निगम का यागनी का ये गीत है हसीना मान जाएंगी, हसीना मान जाएंगी कि बिन आपके कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ पल की जुदाई भी सही नहीं जाती, तुम खुद ही समझ लो और तुम खुद ही समझ लो और प्यार की लिख कर ये बात मुझे कहीं नहीं जाती, लिख कर ये बात मुझे कहीं नहीं।

और लेके पहला पहला प्यार, और कौन के ये पहला पहला प्यार है हमारे यारो। और उसके बाद अभी हम और आगे अपना प्रोग्राम को आप की सुनाएंगे। तो आज हम आप लोग को दो टॉप सिंगर्स का प्रोग्राम हम सुनाएंगे, और वो है यानी कि द टॉप सिंगर्स फ्रॉम इंडिया, द टाइगर ऑफ द इंडिया, कुमार शानू का गीत, और एक बगल है अलका याग्निक का गीत। तो इस कुमार शानू के साथ अलका याग्निक के गीत हम चलाएंगे, और फिर से उसके बाद हम चलाएंगे और वो है मोहम्मद अजीज का लवली हिट सॉन्ग हम आप लोग को सुनाएंगे। तो पहले हम चलते हैं मोहम्मद

और दोस्तों, जैसे हमने आपको कहा है कि आज हम आप कुछ सॉन्ग सुनाएंगे, मोहम्मद अजीज का सॉन्ग और एक बगल उसके बाद, और वो है टाइगर ऑफ इंडिया कुमार शानू और अलका यांगनिक का सॉन्ग हम आपको सुनाएंगे।